0: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ. दिस इज़ योर होस्ट एपी द हिपी एंड आई एम बैक हियर. मैं आ गई हूँ अपनी दुनिया छोड़ के. नहीं, मैं अपनी दुनिया में ही हूँ, बस मैं आपको अपनी दुनिया में लेके जाने वाली हूँ. आई टोटली साउंड लाइक ए स्पूकी हॉरर चुड़ैल ऑन बनियान ट्री. नो, आई एम किडिंग भाई. इतनी बकवास कौन ही करता है? मैं ही करती हूँ, है ना? इतने मज़ेदार मज़ेदार जोक्स कौन ही करेगा? मैं ही करूँगी. तो गाइज, आप सुनते रहिए, दिस इज़ फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू मी एपी द हिपी ओनली हियर ऑन माई शो एन इवनिंग इन डैलस. टुडे वी हैव गॉट सम अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग. Lots of stories. एक ही story है. Lots of fun announcements, game and everything. So guys, stay tuned.

भाई आई तो डेफिनेटली हैव माई ट्रस्ट, आई डोंट नो अबाउट हर. हाउ एवर, हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर एंड योर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज? यू नो ऑल दीज फाइनेंस गुरुज, दे से द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज. यू नो इट्स लाइक यू आर नॉट ट्राइंग टू कम्पीट विथ हाउ मच आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर फ्यूचर, बट हाउ सून आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्यूचर. So a person who starts when he is 25 by little adding to his 401k or retirement plans or whatever is way ahead. You know, if a person starts at 25 contributing only like $100 a month or something, he is way ahead than a person who starts at 40 contributing $500 a month. Okay? So I mean it's a time ka game by the end of it. ठीक है? तो अगर आप वैसी सिचुएशन में हैं एंड यू स्टिल वांट टू काइंड ऑफ प्ले द कैच अप गेम, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट माई टाइम एक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई. दे हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. वेदर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. विजिट माई टाइम एक्विटी डॉट कॉम और कॉल 4697021272. गाइज, आई हैव बिन अंडर अ लिटल बिट ऑफ स्ट्रेस टूडे. यू नो वाई? बिकॉज आई हैव गॉटन, यू नो इट्स रियली हार्ड टू स्टैंड अप टू योर बॉस एंड आई टोटली गेट इट. एंड आई डोंट मीन लाइक माई फनीशियर बॉस. मोस्ट पीपल हु नो हु बीन लिसनिंग टू माई शो, आप सभी को पता है कि मैं फनीशियर में भी काम करती हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव माई ओन स्टफ विच इज़ आई टीच माई प्राइवेट लेसन्स एंड म्यूजिक लेसन्स एंड की बोर्ड एंड गिटार एंड वॉइस एंड वगैरह वगैरह. एंड आई ऑल्सो डू परफॉर्मेंसेस फॉर माई बैंड कॉल डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. तो वाई वेन आई एम डूइंग माई टीचिंग बिसाइड्स डूइंग प्राइवेटली विच इज़ माई ओन क्लाइंट्स, आई ऑल्सो वर्क फॉर दिस कंपनी विच इज़ कॉल्ड, आई एम नॉट गोना टेल यू द कंपनी दैट आई वर्क फॉर. ठीक है? तो वो लोग मेनली, मेरा काम वहीं से है बिकॉज दे पार्टली स्पॉन्सर्ड माई वीज़ा. तो उन्होंने उनका उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो मेरे वीज़ा फॉर्म में भी लिखा हुआ था, जो जो अप्रूवल ऑफ नोटिस जो भी आता है उसमें लिखा था इट एक्सपायर्स ऑन फ्राइडे, दिस फ्राइडे 24 जुलाई. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म है, उसके बाद आई एम टोटली इंडिपेंडेंट बाय माई सेल्फ. ओके? तो क्या बोलते हैं, मैंने उनको बोला कि देखो भाई 24 को ख़त्म है, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है. मैंने उनको मार्च में बता दिया था कि मैं छोड़ के जा रही हूँ. और उन्होंने उस टाइम पे बोला था ओके वी विश यू ऑल द बेस्ट वगैरह वगैरह ऐसे करके. फिर उसके बाद कल कल से कहते हमने तुमको अगले हफ्ते के दोपहर के कुछ काम भी स्केड्यूल कर दिया है, वो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, तो नाउ यू हैव टू डू इट. मैंने कहा हेलो, मैं नहीं कर रही, मैंने तुम्हें पहले ही अपना रिजिग्नेशन दे दिया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. हाउ कैन यू टेल मी टू डू समथिंग लास्ट मिनट? मैंने तुमसे अपना स्केड्यूल मई में मांगा था, मई 29 को मेरा मेल एक्सचेंज हुआ था. एंड इतने दिनों तक ना मैं अपना मुंह चुपचाप करके बैठी रही कि नहीं यार, दे हैव पार्टली यू नो अग्रीड टू स्पॉन्सर माई वीज़ा वगैरह वगैरह. अब तो मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है एंड आई हैव फाइनली रियलाइज, गाइज आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. स्टैंडिंग अप टू योर बॉस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू डू आई थिंक, बट समटाइम्स यू रियली गॉट टू टेक अ स्टैंड, है ना?

The next song I'm going to play for you today is something that you may not have heard of. Lekin koi baat nahi guys, keep your ears open because this song is super cool. It has 258 million views. Stop. इतने अपने ऑर्गेनिक हिट्स होते हैं कि ये आपको क्या लगता है कि ये प्रमोशनल हिट्स होते हैं? कुछ तो प्रमोशनल हिट्स होंगे पक्का, लेकिन गाना बड़ा अच्छा है. कमेंट्स भी बहुत है, 71,000 कमेंट्स है इनके यूट्यूब वीडियो के नीचे. दिस इज बाय दिस आर्टिस्ट कॉल्ड बंजारे एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड बैरन एंड द वीडियो इज प्रीटी कूल. इट्स लाइक एन एनिमेटेड लव स्टोरी.

0: Guys, तो बिफोर वी गो ऑन फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट, वी आर अबाउट टू गो ऑन टू अ ब्रेक रियल।
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
3: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
11: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag और ऊपर से ये स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
19: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
2: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
0: Friends, we are back and you guys are still listening to Ippy the Hippie on 104.9 FM Radio, Funasia. Funasia Radio, थोड़ा अगल बगल हो गया वो थोड़ा सा, बट चलेगा चलेगा। and this is my show, An Evening in Dallas. So guys, आपका Tuesday evening कैसा गया? मेरा तो बहुत ही like my entire Tuesday was just a bunch of emails being exchanged with me and my boss. And I'm telling you, it takes so much courage to stand up and stick to your ground. वो लोग आपको बोलते हैं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा काम और आप बोलोगे नहीं मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एंड आई विल नॉट डू इट. सो यू gotta stick to your guns, you know. I mean, it's kind of hard, but you know, I am one of those people who is a real believer of all the woo things in the world. So all the astrology, मतलब I think हमारे उसमें हिंदू और मतलब जो भी हमारे इंडियन ब्लड में है थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वगैरह हम मैच करके करते ही हैं हर कुछ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा है. तो आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, आई बिलीव इन यू नो ऑल ऑफ द क्वांटम लीपिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो वन ऑफ द मेजर थियोरीज इन क्वांटम लीपिंग इज दैट व्हेन एवरीथिंग फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट एंड यू फील लाइक यू नो दिस इज लाइक यू हैव something is forcing you and resisting you and you somehow stick to your guns and you're like nahi I must do it and brim, that's when the quantum leap happens, that's where you get into parallel universe. I mean, I don't know, I don't even know if that makes any sense, but you'll hear all these like meditation gurus or whatever talking about it and I don't know if it's true or not, but it's fun to think about it, hai na. तो गाइज उसी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं चीज मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है यू कैन क्वांटम लीप इनटू अ मच मच मच मच मोर स्ट्रेस फ्री सिचुएशन बाय कॉलिंग ओमर ख्वाजा, बिकॉज डीलिंग विद इट बाय योरसेल्फ इज वेरी स्ट्रेसफुल. ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव बीन देयर टू. तो डोंट स्ट्रेस ओवर इट. Call attorney Omar Khwaja, call the cops and then call attorney and he will come and fight your case for you and help you get the compensation that y'all deserve. And you pay nothing unless you actually win the case. So it's like a win-win. Aapko koi paise bhi nahi kharch karne padenge, kuch sochna bhi nahi padega. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com for free consultation. This segment is actually brought to you by Omar Khwaja. With traffic updates, though I don't have. But I will tell you this, all over my Instagram, I have been seeing like videos of these cops and they've all of these videos are like from 18th July to 2nd August, traffic is really going to slow down in DFW. So don't try to speed even by 5 or 10 miles because there is a cop just around the corner who's willing to just drive behind you and give you a ticket, number one. And number two, there is a lot of construction happening all over DFW. If you're on Preston Road, if you're driving on Hillcrest Road and you're going from like Preston Hollow towards Plano, then you have to really watch out for. There's traffic. There's like construction literally everywhere on the road. There's construction even on Custer Road. Like koi bhi road bolo, kahin na kahin pe kuch na kuch construction chal raha hai. तीन लेन की जगह आपको सिर्फ एक ही लेन मिल रही है कुछ कुछ जगह पे दो लेन मिल रही है इफ यू आर लकी, बट ड्राइव स्लो अदरवाइज यू विल गेट अ टिकट और यू नो यू वांट टू अवॉइड दी सिचुएशंस.

दुनिया बड़ी गोल के बाद ये भजन तो नहीं लगा रही थी. ऑल दो भजन इज नॉट बैड, भजन इज प्रेटी गुड, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट वाइब फॉर ट्यूजडे इवनिंग. हाउ एवर, मे बी संडे मॉर्निंग आप आइए तो जो भी आरजे हैं संडे मॉर्निंग वो जरूर आपके लिए भजन बजा देंगे. ये नेक्स्ट गाना है फॉर सफी, हु वॉन्ट्स टू लिसन टू तेरे जैसा तू, फ्रॉम फनी खान. बाय द वे गाइज, इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट और एनी बर्थडे विशेज और एनी थिंग लाइक दैट दैट यू वॉन्ट डेडिकेट अ सॉन्ग टू, देन प्लीज गिव मी अ कॉल एंड आई विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू.

गाइज इट इज 7:52 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ 10 बजे तक ही होने वाली हूँ. यस यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. द नेक्स्ट सॉन्ग इज एक्चुअली ए रिक्वेस्ट फ्रॉम, एक्चुअली मैं आपका नाम लेना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं. अगर आप ये सुन रहे हैं तो दिस सॉन्ग गोज आउट टू योर वाइफ जो छुट्टी पे गई हुई है अपने मायके कनाडा. तो गाइज उनके लिए जिन्होंने मुझे कॉल किया था, ये आपकी वाइफ के लिए डेडिकेटेड दिस प्यारा सा गाना.

And this next song goes out from Sanjana, who's dedicating the song to her husband. भाई इतना प्यार तो मुझे काश मिल गया होता तो मैं सिंगल नहीं बैठी होती. कोई मेरे को भी गाना डेडिकेट कर दो यार कभी कभी है.

0: गाइज वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक थोड़ी ही देर में, मतलब ऑलमोस्ट एक मिनट में. लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको याद है ना 8 बजे क्या होता है? यस, 8 बजे होता है हमारा गिव अवे टाइम. और आज हमारा 8 बजे का गिव अवे है फ्रॉम सैन इडली. सो इफ यू वॉन्ट टू विन ए डोसा एंड अ ड्रिंक विच इज जस्ट अ कॉफी, नॉट इट्स स्टिल अ रियल ड्रिंक, आई मीन यू नो इट्स स्टिल अ ड्रिंक, बट it's dosa and a filter coffee. If you want to win that, then stay tuned because we're about to go into break and then we will play our giveaway song. And you know what the game is, so I don't need to remind you. Lekin bhai, jaane se pehle, aapko pata hai India mein kya chal raha hai? All the protests and stuff like that. Are you guys following up? Nahi? Koi baat nahi. Aap jab aoge na break se, then we will talk a little more about it. I have some opinions about it, but you know.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Aaja meri gaadi mein baith ja.
7: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
8: Wo thoda overheating tha.
7: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
0: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
4: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
5: Guys, अभी मैं ना Instagram doom scrolling करते करते मेरे को एक बड़ी सही वीडियो मिली of this like मछुआरा in Goa and he has better abs than any of the actors or any of the bodybuilders. He is jacked. उसके ना मसल्स और वो गरीब आदमी है तो उसको पूछते हैं कि भैया आप खाते क्या हो, आपकी बॉडी ऐसे कैसे बने, कहते हैं खाते क्या है, हम तो मछली खाते हैं सिर्फ और हमारे पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, फ्री में मछली पकड़ते हैं और मछली खाते हैं. एंड ही इज जैक्ड देन योर जिम ट्रेनर, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, इट्स सो अमेजिंग. आगे बढ़ते हुए गाइज, यू नो व्हाट टाइम इट इज द टाइम टू प्ले आवर कॉपीकैट सॉन्ग. गाइज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पिछले कुछ दिनों में मेरी एनर्जी थोड़ी सी वापस आ गई है, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग लाइक अ मैड इडियट एनी मोर. आई एम नॉट वर्किंग लाइक 14 आवर्स एवरी डे, सो इट फील्स सुपर ग्रेट और मेरे पास एकदम फुल एनर्जी है आपको एंटरटेन करने के लिए. लेकिन वो बाद में हम बाद में करेंगे, पहले तो हम गिव अवे खेलते हैं. ओके, दिस इज फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. यू कैन विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. इट इज 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडली, कंफर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शन. विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे. तो गाइस खेले, गेम इज वेरी सिंपल, माय नंबर इज 9722355555. गेम इज लाइक सुपर सुपर सिंपल लाइक ऑलवेज. आई एम गोना प्ले यू ए सॉन्ग, नॉट अ हिंदी सॉन्ग, बट यू हैव टू टेल मी द हिंदी कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. ठीक है, और ये थोड़ा सा, वैसे तो गाना बहुत पॉपुलर है, इट इज इनसेनली पॉपुलर, इट्स फ्रॉम द अर्ली 2000s. ओके, एंड इट इज ऑल्सो, आई विल गिव यू दिस बिग हिंट, इट्स फ्रॉम दिस मूवी which features Aishwarya Rai and Shah Rukh Khan and they are brother sisters. No, they are not like a couple, they are brother sisters. And isme wo wala gana bhi hai movie mein, apun bola tu meri lela wo boli fekta hai wagera wagera. To wo wala jo gana hai wo isi movie ka hai, but that's not the song. Okay, to here we go, listen to the song and then tell me the correct answer. I will choose two winners. भाई मैंने अभी तक सॉन्ग ही नहीं अनाउंस किया तो आप कॉल कैसे कर रहे हो, पहले गाना तो सुन लो.

भाई प्यार तो बहुत बार होता है, ये तो गलत बात है, ये तो मतलब लिरिक्स ही गलत है। हुआ है एक बार फिर ना होगा, मुझे तो कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को कितने हजारों बार प्यार होता है, फिर ब्रेकअप भी होता है, फिर किसी और से भी प्यार हो जाता है। दैट्स जस्ट लाइफ, यू नो आई मीन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्ट स्टिकिंग टू वन प्यार योर एंटायर लाइफ? नो आई एम किडिंग, दैट्स टोटली नॉट माई फिलोसफी, बट पीपल डू इट ऑल द टाइम। ओके, तो उसी फिलोसफी से रिलेटेड दिस सॉन्ग गोज आउट टू, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम बिकॉज ही रिक्वेस्टेड मी टू नॉट टेक हिज नेम, बट ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 10th एनिवर्सरीज ब्रेकअप, ब्रेकअप ऑफ हिज 10th एनिवर्सरी फ्रॉम हिज थर्ड गर्लफ्रेंड। मतलब लेट मी सी इफ आई कैन रीफ्रेज दैट, ब्रेकअप फ्रॉम द थर्ड गर्लफ्रेंड बट द 10th एनिवर्सरी ऑफ दैट। डज दैट मेक सेंस? Well, it makes sense to him and it makes sense to me because we both understand it and you enjoy the song. If you are feeling similarly, dil todne wali feelings, aapke liye bhi yehi gaana.

0: भाई यही फीलिंग होनी चाहिए। अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो खुश रहो यार, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा कुछ दिनों में। आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया, क्या हुआ, नहीं हुआ। और वैसे भी इन माय ओपिनियन, मतलब मुझे तो आजकल बड़ी खुशी होती है अकेले अकेले रह के। द फीलिंग ऑफ पीस इज़ अ होल डिफरेंट, इट्स अ होल डिफरेंट वाइब। ओके, आई एन्जॉय माई पीस एंड सॉलिट्यूड मोर देन आई एन्जॉय टाइम स्पेंडिंग टाइम विद समवन एल्स। However, do what you like to do. Don't always listen to me. भाई आगे बढ़ते हुए guys, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, वो ये है कि प्रभु देवा, as you all know, is coming to DFW. और जैसे मैं बोल रही थी कि आई थिंक DFW, एवरी वन हैज़ रियलाइज इट इज़ द मेन हब फॉर ऑल द देसी पीपल राइट नाउ एट दिस पॉइंट। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं ना फ्रॉम इंडिया, दे ऑल कम टू DFW। अपने टूर में हमेशा DFW की एक डेट तो वो डालते ही हैं। तो इसीलिए मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप ऑल्सो इज ब्रिंगिंग प्रभु देवा लाइव, हु इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज माइकल जैक्सन। एंड ज्वाइनिंग हिम आर लॉरेन गोटलिएब, सोनल भदौड़िया, एलेक्जेंडर नोअल, हरिनी नीलकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट सैटरडे August 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट सीयू थिएटर ग्रैंड प्रेरी। टू बुक योर टिकट्स नाउ कॉल 248-233-3828 या फिर बिकॉज फन एशिया इज द मीडिया पार्टनर, यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू एनी ऑफ आवर सोशल मीडिया चैनल्स, दैट इज फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, एंड यू कैन बुक डायरेक्टली फ्रॉम फन एशियाज वेबसाइट एज वेल। तो आई एम गोना प्ले यू वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट फीचर्स प्रभु देवा। हाउ एवर, उसके पहले ये छोटा सा गाना एंड देन वील गो स्ट्रेट इन टू दैट सॉन्ग।
1: But why it's iconic?
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, कहीं को पंगा लेने गए, छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई।
1: Imagine how the song would look if Ali Kunal and Diya did it. Our version. That's what I'm saying. Now you're getting me.
2: You guys want to audition? Yeah? Troll हो जाएंगे, मत करो।
0: गाइज मैं तो गाना लगा रही थी, ये तो कुछ और ही बज रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड में। तो आई विल प्ले द सॉन्ग फॉर यू राइट नाउ विदाउट गोइंग इन टू एनी डिस्ट्रैक्शंस। ये मुझे समझ नहीं आता, ये जब गाने में बजाते हैं ना तो ये बैकग्राउंड में ये डायलॉग्स क्यों होते हैं? लेट्स फिक्स दैट, लेट्स प्ले ओनली द सॉन्ग, बिकॉज मूवी तो आप सब देख ही चुके हो, है ना? हियर वी गो।
2: रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक, लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
1: कॉल 972-897-1530, फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल .com।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं।
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
13: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
14: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: भाई Vanessa Events के बारे में तो नहीं पता, लेकिन I am definitely your celebration partner. If you're celebrating somebody's birthday, anniversary, या फिर breakup, या breakup से 10th anniversary, then call me and I will dedicate you a song. तो guys, फर्स्ट को ना दो चीजें होने वाली है, एक तो प्रभु देवा का भी शो होने वाला है और दूसरा मेरा भी शो होने वाला है। दैट इज राइट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रभु देवा लेवल, ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ आई वाज देन आई वुडंट बी हियर। हाउएवर, इफ यू गाइज हैपन टू बी इन डेंटन एंड यू डोंट हैव टिकट्स टू प्रभु देवा शो, देन यू गाइज कैन कम टू माई शो। आई एम सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ब्लूज डे एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन, and there's going to be lots of live music. It's an open jam session also, 8:30 ke baad. We're inviting lots of guest musicians and it's a performance is going to be so fun. I'm so excited about it because it's my own show after a really, really long time. I normally do private events with my Bollywood band called the Dallas Bollywood Project. But this is my own personal Ippy Sings the Blues Bowl ke show. So do come on out. We start playing at 7:30 p.m. on 1st August at Steve's Wine Bar in Denton. So guys, aage badhte hue, by the way, kal jaise main aake bol rahi thi, you know, pure McKinney mein somehow light chali gayi thi and this was like the first time I've heard something like that in America. Lekin don't be like those people. Go hire Tara Commercial Energy. Business owners in Texas, are you looking for a smarter commercial energy solution? Trust Tara Commercial Energy. Proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service, and customized energy plan. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Guys, I'm here with you for another hour and a half. 10 baje tak only. Tab tak ke liye, lots of music, less talking.

एंड फ्रेंड्स वी आर बैक. यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी. यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. भाई लाइफ में स्ट्रेसेस सबको आती है, मुझे भी आती है. करंटली आई एम जस्ट ट्राइंग टू डील विद सम टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट, नॉट एट फनेशिया. फनेशिया इज रियली नाइस थैंकफुली, बट सम फॉर माय अदर जॉब एंड आई एम ट्राइंग टू डील विद द स्ट्रेस ऑफ दैट, यू नो. सो फॉर सिचुएशंस लाइक दिस वी आर ब्रिंगिंग टू यू ओशो यूनिवर्सल. दिस इज प्रॉबली वॉट यू आर लुकिंग फॉर. जॉइन द ओशो मेडिटेशन रिट्रीट हैपनिंग from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience the powerful meditation techniques, music, celebration, deep silence and inner transformation under the guidance of Swami Prem Maitreya. Whether you're a beginner or an experienced meditator, everybody is welcome. I've heard some really cool about these meditation retreats. Apparently you get to wear this big robe and just kind of meditate all day. It's like a vacation but also for your mental health. How cool is that? You should definitely try. There are only limited seats, so make sure you register in advance. Call 214-395-6757, 214-395-6757. Your journey to inner peace begins here. Oh.

And guys, we are back. This is Ippy the Hippie, and you guys are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. और हम कुछ ही देर में जाने वाले हैं हमें ब्रेक पे. ब्रेक में जाने से पहले आप ये गाना सुनिए.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Filmo ka maza, action, drama और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
17: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: Guys, we are back. This is Ippy the Hippie on Fun Asia Radio, and you are listening to my show, An Evening, which is no more an evening. It is now nighttime in Dallas. So, guys, aapko pata hai, Hoco, this one of really famous food brand, is finally here in North Texas. Agar aap unki legendary chana puri crave kar rahe hain, ya iconic sandwiches, flavorful curries, ya famous Hoco cold cocoa, then you don't have to wait to the next trip to India anymore. You can go visit HOCO at 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034 and experience the authentic flavors that have made it to one of India's most loved food brands. I'm looking at their bowls, which look absolutely delicious. So go try it out and then tell me how it was. Maybe one of these days I'll actually have the time to go eat dinner somewhere when I'm not working here at Funasia, right? For the full menu and more information, visit hoco.us. That's hoco.us. Come hungry and live with a taste of India. That is correct. Bhai, Delhi mein to HOCO hai nahi, toh maine kabhi nahi try kiya. But agar aapke shahar mein HOCO tha aur aapne nahi try kiya, ya kiya, to then you should go definitely go try it out. The next song that I'm going to play for you is suddenly so popular on Instagram again after all of these years, because you know why? There was this American girl who started dancing to it, and according to her, she goes like, this is the best song for the gym because it hypes you up, because she loves the rhythm in the song so much. And I was like, I mean, you know what? It is. And of all things, it's this song.

0: since we're about to go into a break, this is still Ippy the Hippie, and you guys are listening to Funasia Radio 104.9 FM. And I will be back very shortly. Until then, stick around. We've got some more amazing, amazing songs coming up. And see you in 4, 3, 2, 1.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and

they are committing to that. Okay, so at Passion Health, you're not just a patient, you're like family. आपकी पूरी health, आपकी पूरी family की health के लिए and for the health of our community, 30 minutes is all it takes to have your annual physical, whether you have anxiety, fibro scan, alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and other problems that you have ignored for a long time. Don't ignore them anymore. Just go to Passion Health Primary Care. Schedule your appointment today at 214-666-6259. Usse yaad aaya guys, schedule hota hai ya schedule hota hai? America mein to sab schedule bolta hai. Hum log to sari zindagi schedule bolte hain. Kai baar na mere matlab my accent, वैसे तो जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो पूरी दिल्ली वाली भाषा आती है, लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय अमेरिकन फ्रेंड्स ओवर हियर, देन आई एम लाइक ओ माय गॉड, लाइक थैंक यू गाइस, देन इट बिकम्स लाइक अ कैली गर्ल, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ इट बिकम्स लाइक दैट, बट इट जस्ट काइंड ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम पीपल टू पीपल, एंड इट इज टोटली अनइंटेंशनल. सो वुड यू से स्केड्यूल और वुड यू से शेड्यूल? आई डोंट नो, यू कैन टेल मी, कॉल मी इफ यू वॉन्ट टू.

गाइज, इट इज 9:50 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ टाइम लेने का विदा ले क्या बोलते हैं भाई, यार मैं हिंदी बोलना भूल गई. आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है. क्या है? टाइम आ चुका है आपसे विदा लेने का. इतनी हिंदी मुझे नहीं आती यार. आपको बाय बोलने का टाइम आ चुका है. इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती हमें. तो गाइज, मेरा बाय बोलने का टाइम आ गया. लेकिन बाय बोलने से पहले अगर आपको अपने सपनों का घर बनाना है तो प्लीज रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम, बिकॉज योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 दे आर टर्निंग होम ओनरशिप ड्रीम्स इन टू रियालिटी विद अ स्मूथ एंड अ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड दे विल फाइंड द राइट लोन ऑप्शन टेलर टू योर नीड्स. अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं, अपग्रेड करें या रिफाइनेंस करें, यू शुड गिव देम अ कॉल एंड मे बी दे कैन हेल्प यू आउट. ओके, कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. तो गाइज, इट इज 9:51 ऑन द क्लॉक. यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी एंड इन 10 मिनट्स आई एम गोना साइन ऑफ. उसको जो साइन ऑफ करने से पहले आई विल कम एंड से बाय वन मोर टाइम. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

हाय गाइस, दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी 7 से 10 बजे। आई होप यू एंजॉय टुडेज शो। गुड नाइट एंड हैव ए ब्यूटिफुल गुड नाइट्स रेस्ट बिकॉज वी ऑल नीड इट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
3: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
4: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
3: सच में सब संभालेंगे
4: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.
6: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
7: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Good evening, Dallas. मैं हूँ स्निग्धा और वेलकम टू द 10 PM क्लब ऑन फनेशिया 104.9 FM. आज रात थोड़ी बॉलीवुड की टांग खींचते हैं, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि सिनेमा ने हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई कर दी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ बॉलीवुड में पॉसिबल है. हीरो 3 घंटे विलन के साथ फाइट कर रहा होता है, शर्ट फटी हुई होती है, बाल उनके मैसी होते हैं, लेकिन फेस पे एक स्क्रैच भी नहीं. और हम एक दिन से ऑफिस से घर आते वक्त ट्रैफिक में फंस के जाए और हमारी एनर्जी लेवल 0. लेकिन शायद इसी मैजिक के वजह से मूवीज़ होते हैं, रियलिटी में जो पॉसिबल नहीं होती है वही स्क्रीन पे देखकर हम मजे लेते हैं. सो वेलकम टू द नाइट 10 PM क्लब और हम बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में और सुनेंगे बॉलीवुड के गाने.
1: शरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी.

That was दिली वाली गर्लफ्रेंड फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी. एक मूवी को यादगार क्या बनाता है, हीरो या उसकी स्टोरी या उसकी म्यूजिक या वो एक डायलॉग जो 20 साल के बाद भी हम रिपीट करते ही रहते. बिकॉज समटाइम्स ना एक नॉर्मल सीन भी आइकॉनिक बन जाता है, एक एक्सप्रेशन हो या एक बैकग्राउंड क्यों, और बस ऑडियंस उसी पे बना लेते हैं एक छोटा सा मोमेंट. और मुझे लगता है बॉलीवुड का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि कुछ सीन्स हमारी मेमोरीज के पार्ट बन जाते हैं. आपको मूवी याद नहीं होती लेकिन वो एक सीन याद ज़रूर होता है, लाइक द सॉन्ग द दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड. जैसे किसी की शादी में गाना बजते ही सबको पता होता है डांस फ्लोर किधर है. सिनेमा का भी कुछ ऐसा ही एक अंदाज है. वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड टू नाइट क्योंकि फनीशा चलती है बॉलीवुड पे एंड ऑल ऑफ अस लव बॉलीवुड के गाने, उनके मूवीज. दैट्स ऑल, लेट्स कीप द नाइट क्लब गोइंग ऑन.

Isn't it fun, like Chennai Express, Two States? ऐसे मूवीज में ना, व्हाट आई लाइक इज एक साउथ इंडियन लड़की और एक नॉर्थ इंडियन लड़का बस अपने प्यार के लिए क्या क्या करते हैं. यू नो दैट इज अ ब्यूटी इन बॉलीवुड, जो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ इंडिया को भी लेके आके इतने जलवे दिखाती है, हमें इतना ड्रामेटिक मूवी दिखाती है, एंड ऑल ऑफ अस गेट सो इमोशनल. व्हेन आई सॉ टू स्टेट्स मैं तो इमोशन के लाइक चेन्नई एक्सप्रेस वॉज फनी, बट टू स्टेट्स इट्स समथिंग सो स्पेशल इन आर हार्ट्स. हु एवर देर माइट बी गर्ल्स एंड बॉयज हु आर लाइक, बॉय नॉर्थ इंडियन हो सकता है और गर्ल साउथ इंडियन हो सकता है, बट इट इज़ फाइन गाइज. बॉलीवुड ना हमें एक चीज़ आपको लाइक यू नो इट विल हेल्प इज यू कैन चूज दैट पाथ टू गेट योर गर्ल ईजीली. सो वॉच दीज काइंड ऑफ मूवीज लाइक अ रोम कॉम, बिकॉज आई लव रोम कॉम्स. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
2: Hi this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Fun Asia Radio
3: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Fun Asia Radio

मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, मूवी में कोई भी कैरेक्टर हो, उसके पास परफेक्ट टाइमिंग का सुपर पावर होता है क्या? हीरो को एग्जैक्टली उसी वक्त एंट्री लेनी होती है जब हीरोइन इमोशनल हो, ऑफ कोर्स। विलेन को एग्जैक्टली उसी वक्त फोन करना होता है जब सीक्रेट रिवील होने वाले हो, और बैकग्राउंड म्यूजिक, वो तो सबसे इंटेलिजेंट ही कैरेक्टर है। हीरो कुछ बोले या ना बोले, बट म्यूजिक पहले बता देता है कि आप कुछ बड़ा होने वाला है। रियल लाइफ में भी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाए ना, हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा, बिकॉज एनीवेज वीकडेज वी ऑल फील ड्रामेटिक। नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू।

0: अगर आपको शानदार के
1: इमेजिन बॉलीवुड मूवीज में आज की टाइम बनना होती तो सिचुएशंस कितने डिफरेंट होते। डीडीएलजे में राज सिमरन के लिए ट्रेन के पीछे भाग रहा है, लेकिन 2026 वर्जन में शायद पहले लोकेशन शेयर करता है, फिर लाइव लोकेशन चेक करता है, फिर मैसेजेस आता है योर फ्रेंड इज मूविंग अवे फ्रॉम योर लोकेशन। और इमेजिन के3 जी फैमिली ड्रामा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप का ड्रामा होता है, एक तरफ गुड मॉर्निंग मैसेजेस और दूसरी तरफ और 20 मिस कॉल्स। टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी कर दी है, लेकिन बॉलीवुड के प्रॉब्लम शायद और कॉम्प्लिकेटेड कर दिए होते। चलो इसी इमेजिनेशन को थोड़ा पॉज देते हैं, क्योंकि स्टिल बॉलीवुड मैजिक अभी भी बाकी है। द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू।
2: आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं उसकी शादी हो रही है।

0: कुछ गाने क्यों होते हैं कि कितने भी साल पुराने हो जाए उनकी एंट्री अभी भी सेम इम्पैक्ट देती है। दैट वाज चीज़ बड़ी है मस्त इन अ रिवाइंड वर्जन। पहला नोट से ही मूड चेंज, पहला बात से ही पता चल जाता है हाँ ये तो वही गाना है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी कभी हमें लिरिक्स भी याद नहीं होते, बस फीलिंग याद होती है। एक गाना किसी रोड ट्रिप से जुड़ा होता है, कोई कॉलेज टाइम से, कोई किसी रैंडम शाम से। शायद इसीलिए म्यूजिक सिर्फ सुनना नहीं जानता, कभी कभी वो पुराने मेमोरीज का शॉर्टकट भी बन जाते हैं। अब गाना आ रहा है, हो सकता है किसी की मेमोरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रिजॉल्व हो, लाइक शादियाँ एंड ऑल एंड पार्टीज एंड ऑल फंक्शंस। यार मैं अपनी कंट्री कितना मिस करती हूँ जब ऐसे देसी गाने सुनती हूँ।
1: हाँ हाँ।

You're listening to Phanisha 104.9 FM into the 10 PM Club with me, RJ Snigda. So, हम अब थोड़ा controversy create करते हैं. मेरा एक unpopular opinion है कि movie का hero हमेशा hero नहीं होता है. कभी कभी ना side character ही पूरा movie film चलाती है. वो funny friend, वो strict parent, वो एक supporting character जिसका screen time शायद 15 minute होता है, लेकिन important और इम्पैक्ट मूवी का सब बन जाता है वो. और ऑनेस्टली रियल लाइफ में भी थोड़ा वही लोग याद रहते हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं होते, पर हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो खुद प्लान नहीं बनाता लेकिन सबके प्लान्स बचाता है. चलिए अब एक और गाने के साथ थोड़ा और सेलिब्रेट करते हैं. स्टे ट्यून्ड विद फनीशा 104.9.

You are listening to the 10 p.m. Club on Phoenicia 104.9 FM with the RJs. देखता एक सीन के बारे में बात करनी है. कभी नोटिस किया है कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ कुछ ज़्यादा होता ही नहीं फिर भी याद रह जाता है. ना कोई ह्यूज एक्शन, ना कोई ड्रामेटिक डायलॉग, बस एक एक्सप्रेशन, एक साइलेंस और एक छोटी सी मूवमेंट. और वही तो सिनेमा की मैजिक है. रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है. कभी किसी के साथ 3 घंटे बैठ के याद नहीं रहता कि क्या बात हुई थी, लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि फ़नी मोमेंट सालों तक याद रह जाता है. शायद इसीलिए कुछ मूवीज़ हम रिपीट करते हैं, स्टोरी पता होती है फिर भी देखते हैं, क्योंकि हम एंडिंग के लिए नहीं उस फीलिंग को वापस लेने के लिए देखते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिलेट टू मी दिस? क्योंकि अगर मुझे मूवी पसंद आ गए तो उसकी स्टोरी जितना भी बकवास हो मैं तो देख रही हूँ. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू.

बॉलीवुड मूवीज़ में एक कैरेक्टर हमेशा होता है जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। हीरो को कुछ नहीं पता, हीरोइन कंफ्यूज्ड है, विलन प्लान बना रहा है, और एक साइड कैरेक्टर आता है और बोल देता है, मुझे सब पता है। मतलब भाई, तुम मूवी देख रहे हो या इंटेलिजेंस एजेंसी चला रहे हो? लेकिन सच बोलो तो वही कैरेक्टर्स स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और रियल लाइफ में हर ग्रुप में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सब न्यूज़ पता होती है, और उसको ना अपने पेट में वो कुछ रखता नहीं है, उसको बस बाहर करना है। बाकी सबका फुल डेटाबेस रेडी होता है, सिनेमा हो या लाइफ, इन्फॉर्मेशन वाले लोग कभी बोरिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइज़।

म्यूज़िक का एक अलग ही मैजिक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम अक्सर गाने को उसकी मेलोडी से नहीं, अपनी मेमोरी से कनेक्ट करते हैं। कोई सॉन्ग सुनते ही याद आ जाता है वो कॉलेज का टाइम, वो रोड ट्रिप, वो फैमिली फंक्शन, या फिर बस एक रैंडम इवनिंग जब ये गाना बैकग्राउंड में चल रहा था। और शायद इसी वजह से प्लेलिस्ट का कभी सिर्फ सॉन्ग्स लिस्ट ही नहीं होते, वो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। एक गाना खुश मूड का चैप्टर, एक गाना नॉस्टैल्जिया का, एक गाना वो जो हम पब्लिकली नहीं मानते कि पसंद है। चलिए अब ऐसे ही ट्रैक को शायद किसी की प्लेलिस्ट का फेवरेट पार्ट बन जाए।

It's 11:34 p.m. on the clock. आप सुन रहे हैं The 10 p.m. Club on Dil Se Dallas with Snigdha on 104.9 FM पर Fun Asia. And that was Dil Ko Karar Aaya starring Siddharth Shukla and Neha Sharma. We miss you, Siddharth Shukla. He was a thing. जब से बालिका वधू चल रही है, Big Boss and Shehnaz Gill, what a couple they were and what an actor he was. We all miss you, definitely. He was a wonderful actor. हम Bollywood के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए मैं ऐसे ही सिद्धार्थ जी की याद आ गई. And he was a fantastic and a very good actor too. अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं. मैं आपकी टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं बस आपको गानों के साथ चिल करवाऊँगी. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइस, कीप लिसनिंग टू फनी शो 104.9 FM.

इट्स 11:45 PM एट द क्लॉक, और बस देखते देखते रात का ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाली है. वैसे मुझे लगता है 10 बजे के बाद वाली कॉन्वर्जेशंस की फीलिंग ही अलग होती है. दिन भर हम स्केड्यूल्स, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हैं, लेकिन रात को थोड़ा टाइम मिलता है उन रैंडम थॉट्स के लिए जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं. जैसे कुछ गाने कभी पुराने नहीं लगते, कुछ मूवी सीन्स याद रह जाती है, और क्योंकि बॉलीवुड का लॉजिक कभी रियलिटी के साथ हिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बॉलीवुड के दीवाने बनते हैं. रियलिटी से ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है. यू आर लिसनिंग टू द 10 PM क्लब ऑन फनीशा 104.9 FM एंड दैट्स मी RJ स्निग्धा. सुनते रहिए, आपके लिए अगले देव गाना रेडी है.

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ.

थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर नाइट विद मी ऑन द 10 PM क्लब. मैं हूँ स्निग्धा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नए ऑब्जर्वेशंस, नए गाने और नए कॉन्वर्सेशंस के साथ. तब तक म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए, ड्राइव सेफ रहिए और याद रखिए, हर दिन की एंडिंग थोड़ी सिनेमैटिक होनी चाहिए, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड टुनाइट. गुड नाइट डैलस, टेक केयर.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
2: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सम जर्नीज बिगिन विद साइलेंस एंड सम बिगिन विद डिवोशन। At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. Your growth, our strategy.
7: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम हैं ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर, सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी। जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: अच्छा है।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
2: हाँ।
1: प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कहीं पे है जिंगल की आवाजें,
1: कहीं पे वो नलके की टप टप है।
0: कहीं पे वो खाली सी खिड़की है,
1: कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है,
0: कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है,
1: कहीं कुछ मुंडेरों

एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील करवाओ अभी क्या। रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरियां हैं, वो डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: मैं मंदर क्यों जावा, मेरा यार खुदा है। मैं मस्जिद क्यों जावा, मेरा यार खुदा है।
1: लो जी।
2: बिलो।

वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

0: मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: आकर

आओ मसगली आओ।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, टैलेंट में रेडियो का टैग, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonesia, 104.9 FM.

0: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
14: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
13: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
2: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
2: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
1: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं.
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं.
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं.
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
1: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
7: अरे बस भी करो यार.
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
7: नाम Hoko हो या Ocho, क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko, अब Frisco में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
0: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
1: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल .com.
10: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
11: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स. क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
1: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction.
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट, ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
17: Calculating route, rerouting.
16: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
17: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
16: क्यों?
17: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
16: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
17: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
19: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
7: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta.
0: From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
20: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
21: Welcome to this final hour of the program, ladies and gentlemen, your morning drive time special right here on the Fun Asia Network on this beautiful but rather hot Wednesday morning. It's the 22nd of July today.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi, ab sab kuch milega ek hi jagah, HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer, zaroor dekhiye, HEB ke naye DFW stores, Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jayein aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 or visit astrologereeshwar.com.
6: Hocho.
7: It's Hoco.
8: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
8: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में दोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
13: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: That's my show for today. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10, right here on the Fun Asia Network.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
9: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
8: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
9: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
12: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
13: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
4: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

ऑलराइट, बारिश का कोई असर नहीं है, लेट मी टेल यू ऑल दैट. अगर आप सुन रहे हैं हमें मिसिसिपी, लुइजियाना या फिर फ्लोरिडा से, तो शायद आप बारिश देख रहे हैं, शायद क्या बिल्कुल बारिश देख रहे होंगे, बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म बर्था देयर. बट हियर इन डालस फोर्ट वर्थ एरिया कोई चांस नहीं है यार बारिश का दूर दूर तक अभी. एंड दैट्स वॉट यू नीड टू नो, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रही है. 8 PM तक वी हैव दिस हीट एडवाइजरी गोइंग ऑन टूडे, एक्सट्रीम हीट वार्निंग दैट वी हैव टूडे. Keep that in mind, and keep in mind that we have the coolest of the songs that will be playing on the airwaves of Anisha Radio. Yaar, dua salam ho jaye. Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Anisha Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali with Meetho, aur ab tak aapka saath de rahi thi the one and the only Shabnam ji. Main aapke saath 12:30 tak right here.

और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं इस कॉम्पेंसेशन का, एंड दैट इज अमेज़ॉन प्राइम कस्टमर्स जो कि एलिजिबल हैं टू रिसीव कॉम्पेंसेशन एज अ पार्ट ऑफ 2.5 बिलियन डॉलर्स एंटी ट्रस्ट सेटलमेंट. जस्ट FYI लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि अमेज़ॉन के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत टाइट है, और इसीलिए हो सकता है ये कॉम्पेंसेशन आपको भी आप भी डिजर्व कर सकते हो. एंड इट इज यू नो लास्ट सेप्टेम्बर जब ये सेटलमेंट हुआ, फेडरल ट्रेड कमीशन को कहा गया कि यू नो यू हैव टू गेट अमेज़ॉन टू पे कस्टमर्स आफ्टर एलिजिडली कोअर्सिंग देम इनटू एनरोलिंग इन प्राइम सब्सक्रिप्शंस एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कैंसिल. एंड दिस इज ऑल द रीजन फॉर द सूट एक्चुअली. एंड ये फाइनली एक सेटलमेंट में, ऑल द रॉन्ग डूइंग जो है अमेज़ॉन ने नहीं माना, बट दे फाइनली ऑप्टेड टू सेटल एंड इज वर्किंग टू मेक इट क्लियर and simple for customers to cancel their membership. तो कौन eligible है? Primarily मैं ये बता देती हूँ, if you are a US consumer who signed up for Prime, and there is a number of other things that you have to meet up, कि एक certain period में अगर आपने cancellation process की कोशिश की हो, I think it's June 23rd 2019 to June 23rd 2025, तो आप eligible हैं. There are few other points that you might want to look into if you think you fit in this ब्रैकेट. मैंने सोचा यार अमेज़ॉन इज समथिंग जो हमारा ना डेली एक कंज्यूमर रिलेटेड चीज हो गया है, कि जहां पे हर चीज हमें पता है कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. तो आई थॉट आई विल जस्ट ब्रिंग दिस अप एंड मेक श्योर ऑल ऑफ माय लिसनर्स आर अवेयर ऑफ इट. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: Sayara, that's the name of that super duper hit film, Yashraj film, starring Anit Padda and Ahan Pandey, जिसने एक साल कंप्लीट किया इसी 18 को. पता ही नहीं चला यार एक साल कैसे कंप्लीट हुआ. लेकिन गेस वॉट, टू सेलिब्रेट द माइलस्टोन, द लीड स्टार्स रीयूनाइटेड एट लंदन आइकॉनिक वेम्बली स्टेडियम, वही लोकेशन जहां पे फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स शूट हुआ था. एंड दे अनवेल्ड अ स्पेशल टू डिस्क कलेक्टर्स एडिशन वाइनल LP. मैंने बताया ना आजकल वाइनल रिकॉर्ड्स का फैशन फिर से वापस आ गया थैंक्स टू जेन ज़ी. एंड इट इज दैट यू आर लिसनिंग टू फनीशिया.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
14: Tracks that put you on the right track.

जिंदगी ना अकेले बिताना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हम जो सोशल एनिमल्स कहलाते हैं, हमें एक साथ की ज़रूरत होती है. और आपको एक कमाल का साथ मिलेगा एट दिस इवेंट ब्रॉट टू यू बाय ओशो यूनिवर्सल. इफ़ यू नीड दैट ब्रेक फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एवरी डे लाइफ, तो आप बिल्कुल इस इवेंट पे जाएं. जॉइन द ओशो मेडिटेशन रिट्रीट हैपनिंग July 31st through August 2nd एट ओशो कैवल्य धाम इन डेनिसन. और ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल मीडियम साबित हो सकता है, यू नो, मेडिटेशन टेक्निक्स समझने के लिए, सीखने के लिए या करने के लिए. वो सारी चीज़ें जो म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड है, सेलिब्रेशन के साथ, डीप साइलेंस के साथ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एंड ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी प्रेम मैत्रेय. डू रिमेंबर, हमारा इंटेंशन सबका शायद सेम ना हो, लेकिन इनमें से शायद कुछ हो कि स्ट्रेस रिडक्शन हो, या इमोशनल रेगुलेशन हो, या कॉग्निटिव फोकस हो, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो. इट इज फॉर बिगनर्स एंड फॉर एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स. आप जरूर जाएं, लिमिटेड सीट्स हैं, इसीलिए रजिस्टर करने सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. 214-395-6757 इज दैट नंबर. वंस अगेन 214-395-6757. वंस अगेन July 31st से August 2nd तक एट ओशो कैवल्य धाम इन डेनिसन टेक्सास. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. जुबिन नौटियाल की आवाज़ सुनी आपने, वन ऑफ दोज अंडररेटेड सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म काबिल दैट ऋतिक रोशन एंड यामी गौतम स्टारर. एंड बाय द वे, यामी गौतम वन नेशनल अवार्ड, यू ऑल नो ना, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल यामी गौतम को मिला है फॉर आर्टिकल 370. थोड़ा सा तो मुझे ये भी फीलिंग है कि क्योंकि धुरंधर इतनी उनके हस्बैंड की इतनी सक्सेसफुल हुई है, इसीलिए यामी गौतम अब लाइमलाइट पे आ रही, क्योंकि एक्टिंग तो वो बहुत सारी फिल्मों के लिए बहुत कमाल का कर चुकी हैं. लेकिन मैंने उनको सोचा नहीं था कि शी विल बी एबल टू विन ए नेशनल अवार्ड, नॉट बिकॉज ऑफ अ टैलेंट, बिकॉज of the industry politics actually. So I'm very happy that she has finally won for herself this coveted award, national award, 72nd national award. Mein bahut sare kamal ke artists ko mila hai ye honor, and she is definitely one of them. Ek aur Jubin Nautiyal ka gana yahan pe present karna chahti hu aap logon ke liye, one of the recent releases, and this one is going out to Safi.

और ये हुआ कि भाई एक और दिन हमारा बहुत गर्म जो होने वाला है ये हो रहा है डैलस फोर्ट वर्थ एरिया में. यस, द हीट इज ऑन वंस अगेन फॉर द एंटायर डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स विद अनदर एक्सट्रीम हीट वार्निंग इन प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस अंटिल 8 PM, नून टिल 8 PM, लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये जो टेम्परेचर है हमारे आज, कुछ ये जो ह्यूमिडिटी और जो हीट इंडेक्स जो हम कहते हैं ना, उसके कारण 116 डिग्री तक हमें फील होने वाला है. एंड इट इज़ द वेदर हीट, एक्सट्रीम हीट वार्निंग दैट वी हैव टुडे वंस अगेन. और 100 से 106 डिग्रीज तक का रेंज करेगा फॉर द नॉर्थ टेक्सस, डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉर्थ टेक्सस. एंड देर इज़ अ स्लिम चांस ऑफ रेन, जो कि मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि यू नो इट विल बी मोर टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ डैलस फोर्ट वर्थ, वाइल द रेस्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सस विल रिमेन ड्राई. एंड कल दिस हीट कंटिन्यूज एंड द हीट एडवाइजरी ऑल्सो इज इन प्लेस टूमोरो अगेन फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स गोना फील लाइक यू नो 108 डिग्रीज टूमोरो. बट येस, टूडे वन ऑफ दोज डेज वेन यू हैव टू टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस वंस अगेन, लेडीज एंड जेंटलमैन. और मैं आज जब स्टूडियो आ रही थी तो कस्टर पे थी एंड इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड पीपल आर हार्ड एट वर्क एंड आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू गेट इट यू नो स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग और फिर दोपहर को. आई होप दे टेक दैट ब्रेक बिकॉज हेड टू टो दे आर कवर्ड. आई डोंट नो हाउ डू दे मैनेज रियली टू वर्क इन सच हीट, बट सीरियसली मोर पावर टू देम. एंड आई होप यू नो कि उनके पास पूरी तैयारी होती है टू कीप देम सेल्व्स well hydrated and everything. You know, there will be a slight uptick in humidity levels tomorrow and day after. तो हमारे जो temperature होगा वो few degrees cooler शायद हमें थोड़ा सा feel हो. Looking ahead to next week, more triple digit heat is ahead of us that we cannot escape. Living in Dallas Fort Worth area, being in the month of July, तो क्या ही कहा जाए. Well, temperatures हमारे shoot up करने वाले हैं August 1st को. And I'll tell you exactly why. Mathangi Entertainment Group आपके लिए लेकर आ रहे हैं यार हमारे इंडिया के माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव. इट इज विथ हिज गैंग दैट इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस. लॉरेन गोथली एंड सोनल अलेक्जेंडर एंड देन देर इज हरिनी एंड नताशा एंड सानवी मेघना फॉर दैट अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट दैट यू आर गोइंग टू विटनेस ऑन August 1st. तो वाकई में टेक्सिस ट्रस्ट क्रेडिट यूनियन थिएटर का जो तापमान है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हाई. आई कैन अश्योर यू दैट इट इज़ इन ग्रैंड प्रेरी एंड आई नो दैट यू नो अबाउट इट. बुक योर टिकट्स बाय कॉलिंग एट 248-233-3828. या तो एक सीधा सा रास्ता आपको मैं ये दे सकती हूँ कि फन एशिया नेटवर्क के सोशल मीडिया पेज पे जाएं टू बुक योर टिकट्स ईजिली ऑन पिंड पोस्ट फॉर दिस इवेंट. दिस इज प्रभु देवा लाइव, लेडीज एंड जेंटलमैन. और प्रभु देवा जो हमेशा वैसे इतने सुपर एनर्जी के साथ उनके डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, वन ऑफ दोज वेरी रेयर सॉन्ग्स दैट वी हैव इन बॉलीवुड जिसमें एक द वेरी रोमांटिक प्रभु देवा दैट यू सी.

0: ले जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
3: प्लान या होप?
2: मतलब?
3: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
2: ओके, तो मेरा वाला होप है।
3: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
2: क्यों?
3: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
1: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: Hey, tumne kabhi insurance liya?
12: Liya.
11: Kabhi policy samajh bhi aaya?
12: Nahi aaya.
11: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
6: Visit www.senadainc.com today.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
14: Tracks that put you on the right track.

एंड दैट्स द मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन शमशेरा, जिसका आप गाना सुन रहे थे. और क्यों सुन रहे थे, क्योंकि ये आज ही के दिन लेडीज एंड जेंटलमैन रिलीज हुई थी इन द ईयर, लेट्स सी 2022 वाज द ईयर ऑफ रिलीज. और रणबीर कपूर का ये बिग कमबैक फिल्म था, मतलब 4 साल के बाद वो ये फिल्म कर रहे थे. और यशराज फिल्म्स का मेगा बजट शमशेरा वाज द नेम ऑफ द फिल्म. और पहली बार डबल रोल कर रहे थे, फादर और सन का किरदार निभा रहे थे टू मेक देम फील डिफरेंट. उन्होंने रणबीर कपूर जो है उन्होंने एक अलग टेक्निक, वॉइस टेक्निक यूज़ किया था. एंड ही स्पोक using his diaphragm with an incredibly heavy, raspy, booming voice for the father's character, जिसके कारण कई दफ़े डबिंग के वक्त उनकी आवाज़ बैठ जाती थी बिल्कुल. और दैट इज़ द काइंड ऑफ मेहनत ही डिड फॉर द रोल्स इन दिस मूवी शमशेरा अली. बट डिड इट वर्क? इट डिड नॉट. एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस. और ये जो फिल्म थी, इट वॉज ए कैटास्ट्रफिक डिजास्टर इन हिज करिया. और इस फिल्म की कहानी जो थी वो काफ़ी डेटेड थी, और शायद ये भी एक वजह रही कि ये फिल्म नहीं चल पाई एट द बॉक्स ऑफिस. उनके एक फ़ैन, उन्होंने एक बार एक रणबीर कपूर के इंटरेक्शन एक हुआ था विथ द मीडिया एंड द ऑडियंस, तो उन्होंने कहा था कि भई अगर ये फिल्म 90s में रिलीज होती तो शायद चल जाती. दैट्स राइट, द स्टोरी वॉज अ बिट डेटेड, कोई नयापन नहीं था कहानी में, एंड दैट इज वॉज प्रॉबली द रीज़न कि ये फिल्म नहीं चल पाई थी. नाउ ये फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी. वहाँ से थोड़ा और पीछे लेकर जाने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अनदर फिल्म विच इज विच एक्चुअली यू नो डिस्पाइट क्रिटिक्स ग्रेट रिव्यूज, ये ज़्यादा कुछ अच्छा फिल्म कर नहीं पाई थी एट द बॉक्स ऑफिस, एंड दैट्स द हॉलीवुड फिल्म स्टार ट्रेक बियॉन्ड. जी हाँ, अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद इट अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस.

जी हाँ, अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद इट अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस, और ऐसा ही कुछ हाल था एक और फिल्म का जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016. दैट्स व्हेन द स्टार ट्रेक मूवी आल्सो रिलीज, और हमारे बॉलीवुड स्पेस में वो फिल्म थी मदारी. मदारी जिसके जो लीड एक्टर थे वो थे इरफान खान साहब. मतलब एक्टिंग के डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी. इट वॉज टू डू विद प्रॉबेबली द साइकी ऑफ द पीपल हु कुडंट रियली एंजॉय द फिल्म एज मच, क्योंकि क्रिटिकल सक्सेस के बावजूद भी ये फिल्म कमर्शली फ्लॉप रही. लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे ना, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म. आई मीन इरफान खान जहाँ होते हैं हम वहाँ पे जस्ट ग्रेटनेस एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दैट इज वॉट ही डिलीवर्ड. ऑल्सो एक रियल लाइफ ट्रेजेडी इन मुंबई जो कि एक ब्रिज कोलैप्स के साथ एसोसिएट थी, उससे इंस्पायर्ड थी ये कहानी. और कमाल का काम किया था उन्होंने इसमें, एंड द मेथड एक्टर दैट ही बॉस. उन्होंने अपेरेंटली लोकल मुंबई ट्रेन्स में कम्यूट किया टू गेट द फील ऑफ इट. एक मास्क और एक कैप लगा के लोगों ने पहचाना नहीं कि उनके बाजू में एक मतलब द जायंट ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्टैंडिंग, बट दे कुडंट नो दैट. बट दैट इज हाउ ही एक्चुअली गॉट इन टू द कैरेक्टर दैट ही प्लेड इन द फिल्म मदारी, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016.

यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विथ मी टू एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ दिस सेगमेंट इफ यू हैव ट्यून्ड इन ये है दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री 22 जुलाई की बात हो रही है और आज के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016 जिसका नाम मदारी जिसका आपने गाना सुना एंड इट्स अ रियली गुड फिल्म इफ यू हैवंट वॉच्ड इट इट्स अ हैवी फिल्म नॉनदलेस इट हैज इरफान खान एंड रितु बिल्कुल सही उनकी कोई भी फिल्म ले लें वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है ऑल्दो दिस फिल्म वॉज डिसअपॉइंटेड एट the makers were disappointed and the team was probably disappointed क्योंकि ये commercial success नहीं हुई थी ये film लेकिन critically acclaimed film Madari that I'm talking about तो चलिए एक और फिल्म पे जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी द ईयर वॉज 2011 और फिल्म का नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और ये वो क्रिस एवंस की फिल्म थी एंड ही वॉज कैप्टन अमेरिका बट क्या आप जानते हैं कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस रोल के लिए इट टुक लॉट ऑफ कजोलिंग बाय रॉबर्ट डाउनी फॉर हिम टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट रोल एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री तो जी हाँ अगर हॉलीवुड में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर रिलीज हुई थी तो हमारे बॉलीवुड में भी कोई कम सुपर हीरो वाली फिल्म रिलीज नहीं हुई थी इट वॉज सिंघम लेडीज एंड जेंटलमैन दैट रोहित शेट्टी सिंघम जो मार्च 2011 से लेकर जुलाई 22 के बीच कंप्लीट हुई मतलब कि स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक सिर्फ 4.5 महीने कुछ लगे कैन यू इमेजिन इट वॉज दैट फास्ट पेस्ड

0: अपने वैल्यूज के भी ले लिए भी ना बिल्कुल एक सिंघम अप्रोच रखें. रोर व्हेन इट डजंट, व्हेन यू सी समथिंग रॉन्ग, राइट. और अगर हेल्थ की बात आए तो भी वो रोरिंग एटीट्यूड रखें टू गेट योरसेल्फ चेक्ड रेगुलरली to be that fit just like Singham. Ladies and gentlemen, for 13 years Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Inhi ke bare mein baat karenge after the break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route. Rerouting.
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
9: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
5: क्यों?
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
11: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटी and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए.
13: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
5: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
17: जीनी
18: हुकम मेरे आका।
17: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
18: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
17: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
18: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
17: और एंटरटेनमेंट,
18: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
17: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
18: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
19: सम जर्नीज बिगिन विद साइलेंस एंड सम बिगिन विद डिवोशन। At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
20: Tracks that put you on the right track.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लाई लाई इतनी बार हुआ उससे मुझे एक और गाने की याद आई, और वो गाना ऐसा है कि जिसमें एक वर्ड है जो कई दफ़े रिपीट होता है इन द फर्स्ट टू लाइन्स एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सॉन्ग एज वेल. मैंने सोचा यार आज ना बिल्कुल बिना टेंशन लिए या कुछ किए, यू नो, बिना कुछ आगे या पीछे की जानकारी लिए आप इस रिडल का सोल्यूशन पूरी तरह से निकाल सकते हो. If at all you want to win from Red Hot Chili Pepper, जहाँ पे हम repeated जाते हैं, तो मैंने इसीलिए repeated words पर emphasis देने वाली हूँ. Red Hot Chili Pepper एक ऐसी जगह कि जहाँ पर एक बार खा लिया, आप अगर you know show off करना चाहते हैं अपने visiting friends या family को, तो आप ज़रूर लेकर जाते हो वहाँ पे जो है Red Hot Chili Pepper. जी हाँ, ये हमारे यहाँ Dallas में पता है आपको ये खाना मिलता है, ये है amazing खाना. मुझे आज भी याद कि हमारे कुछ फैमिली विजिट कर रही थी एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड. रेड हॉट चिली पेपर पे उनको लेकर गए और उनका जो फर्स्ट रिएक्शन था ना, आई कांट टेल यू, इट वाज लाइक आत्मा तृप्त होने वाला जो रिएक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही था, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है एंड दैट इज़ स्मॉल टाउन इन कनेक्टिकट, दैट्स वेयर दे केम फ्रॉम, और वहाँ पे उनके कोई अच्छे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, और यहाँ पे ऐसे कमाल का रेस्टोरेंट, वो जो वो रिएक्शन था, आई ऑलवेज remember. तो रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से आपके लिए ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न, और बाकी तो आप जानते हो कि इनके चार लोकेशंस हैं, रिचर्डसन, मैकिनी, एलन या फ्रिस्को लोकेशंस इनके जो हैं. आप कहीं भी चले जाओ वही हाई क्वालिटी खाना आपको मिलता है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ काफ़ी सारे हमारे जूनियर लिसनर्स भी हैं, छुट्टियां चल रही हैं, और इसीलिए आपको बता दें भाई कि बटर चिकन, इफ़ यू वांट टू किड्स इफ़ यू वांट टू हैव बटर चिकन, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू गो. ऑलराइट, चिकन मक्खन वाला इज़ द बेस्ट इन डैलस देयर. रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से एक गिव अवे आप लोगों के लिए. अगर इस अगले गाने में आप मुझे बताएं कि पहली दो लाइन्स में पल कितनी बार आता है, दिस इज़ ए वेरी सिली क्वेश्चन आई नो, लेकिन गिनो यार, तबीयत से गिनो. मैं गाना पूरा लगाने वाली हूँ और इस बीच आपके कॉल्स लेने वाली हूँ. फर्स्ट टू लाइन्स में वेयर श्रेया घोषाल इज सिंगिंग राइट इन द मुखड़ा पार्ट, द फर्स्ट टू लाइन्स, हाउ मेनी टाइम्स शी सेज द वर्ड पल इन दिस सॉन्ग. गेट रेडी टू इंडल्ज एंड काउंट लेडीज एंड जेंटलमैन. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. बोला ना, आगे पीछे का कोई ज्ञान नहीं चाहिए आपको इस गाने के लिए, इस सवाल के लिए आई मीन.

0: ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डू हैव ए विनर और वो एक्चुअली मेरे साथ हैं. मैं उनको ऑन एयर ही ले लूं क्या? क्या कहते हैं आप? रिचिका, यू आर लाइव ऑन एयर. आई नो आई टोल्ड यू टू होल्ड द लाइन फॉर मी. मैंने कहा कि यार आपके साथ ही गुफ्तगू कर लेती हूँ व्हाइल आई एम ऑन एयर एंड देन आई विल गो बैक एंड टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट योर गिव अवे. तो रिचिका, आपने जीता है फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. हमारी जनता को बताइए कि कितनी बार पल आता है वो पहले दो लाइन्स बाय श्रेया घोषाल.
1: थैंक यू. इट कम्स 18 times आता है वो पल वर्ड इन टू लाइन.
0: क्या बात है, क्या बात है. मैंने बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि यार मतलब मैंने इस तरह का सवाल पूछा है और आप लोगों ने गिन के जवाब भी दिया है. थैंक यू सो मच रिचिका. आई एम गोइंग टू आस्क यू टू होल्ड द लाइन अगेन एंड आई विल गेट बैक टू यू इन ए मिनट्स टाइम. थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको मिला है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न दैट डैलस कैन ऑफर एंड इट्स एट रेड हॉट चिली पेपर. रिचर्डसन, मैकनी, एलन या फ्रिस्को लोकेशन से हमारी जनता जा सकती है और ये सारी चीजें जो रिचिका ने जीती हैं वो खा सकती हैं या जो जो भी उन्हें खाना है. बेसिकली यू कैन गो फॉर दैट. ऑल राइट, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गो फॉर इज अनदर सॉन्ग विच हैज अगेन अ प्ले ऑन वर्ड्स एंड प्ले ऑन वन वर्ड. एक्चुअली जैसे ये पल पे था ना वैसे ये कतरा. ये मेरा ये सेगमेंट है नहीं एक्चुअली. हाँ, मैं बस ऐसे ही एवं ही थोड़ा सा ऐसे भावनाओं में बह गई हूँ. बट आई एम गोइंग टू कम बैक टू द टॉपिक दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड दैट इज अबाउट शॉपिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपको फेक शॉपिंग के बारे में पता है क्या? मुझे भी नहीं विश्वास हुआ था. दीज डोपमीन साइट्स, ये क्या भला होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. एंजॉय दिस अमेजिंग आर डी बर्मन सॉन्ग.

आदि बर्मन्स म्यूजिक एंड गुलजार के बोल और आशा जी की आवाज, व्हाट ए डेडली कॉम्बिनेशन दैट इज. और बोल कितनी खूबसूरत यार. कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो. जी हाँ, बहने बहने दो की अगर बात चले ना, तो यस, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ. लेकिन लाइफ का फ्लो अच्छा रहे उसके लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे में टेक्सास प्राइमरी केयर आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं. ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन दैट दे हैव, इट इज़ लुनॉक्सी मेडिकल. लेडीज एंड जेंटलमैन, फाउंडेड बाय मनदीप आचार्य, लुनॉक्सी मेडिकल आपके लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैंस, कार्डिक डायग्नोस्टिक्स और हिमालयन मेट्सपा सर्विसेज, सारे ऑल अंडर वन रूफ दैट दे प्रोवाइड. सातों दिन ओपन रहते हैं आप लोगों के लिए, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक. और वॉक इन एनी टाइम, अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. विथ दैट, वंस अगेन, लुनॉक्सी मेडिकल शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट चेंजिंग योर डॉक्टर. वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विथ मीठू. और यहाँ पे हमारी गपशप ना अबाउट डोपामिन साइट्स, जो मैं करना चाह रही थी आप लोगों के साथ. फेक शॉपिंग, इसके बारे में सुना है, जो कि साउथ कोरिया में स्टार्ट हुआ है और पूरी दुनिया में ये जो है मशहूर हो रहा है. यस, पीपल आर डाउनलोडिंग दीज हाइपर रियलिस्ट एप्स, जैसे कि फूड नेवर कम्स फॉर टेक आउट, डोपब हॉल फॉर रिटेल. ये जो है ना, ये रियल ई कॉमर्स और डिलीवरी एप्स जैसी बनाई गई हैं. और आप ब्राउज करके यू कैन फिल अप योर वर्चुअल कार्ट विथ फेक प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्लोथ्स, गैजेट्स, फूड एंड ऑल, बेसिकली जो भी उन्हें चाहिए या हमें चाहिए, यू कैन जस्ट यू नो पुट इट इन दैट वर्चुअल कार्ट और उसके बाद फेक चेकआउट भी कर लो एंड उसके बाद वर्चुअल डिलीवरी भी देख लो यार मैप पे. लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि आपने कुछ पे नहीं किया. यस, दिस इज कॉल्ड फेक शॉपिंग. यार ये मेरा ना दिमाग घूम गया ये सुन के. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये आपको ना वो डोपामिन देता है, जो एक एक्साइटमेंट होती है ना शॉपिंग की, वो देता है विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल डॉलर. नाउ इट्स लिटरली एड टू कैरेट, सॉरी, एड टू कार्ट थेरेपी, आप इसे कह सकते हो, राइट. नाउ ये थ्रिल, एक्साइटमेंट, मेंटल रिवॉर्ड, ये सारी बातें मतलब आपको समझ में आ ही रही होंगी कि ये किस वजह से प्रॉबेबली पॉपुलर हो रहा है. माइनस द बायर्स रिमोर्स एंड द डेंट इन योर बैंक अकाउंट ऑफ कॉर्स, एंड इट हैज़ बिकम अ मैसिव कल्चर कोपिंग मैकेनिज्म. मुझे ना ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है. आई ऑनेस्टली एम टेलिंग यू, क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ये है कि ये डिजिटल डिटोर है. They say we are just tricking our brains instead of dealing with the root cause of our stress and consumerism. भाई प्रभु मुझे बचाएं, ये मतलब क्या कोपिंग मैकेनिज्म बोलूं इसको या शेयर मैडनेस, मुझे नहीं समझ आ रहा यार, सीरियसली. यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू. मोर अबाउट शॉपिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग अप इन द नेक्स्ट सेगमेंट. लेकिन ये अगला गाना हमारी लिसनर के रिक्वेस्ट पे, जो एनोनिमस रहना चाहते हैं. This is Gapshap Gali with me too.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
13: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
14: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.
15: Tracks that put you on the right track.

हाउ मेनी ऑफ यू गेस द सिंगर इन दिस सॉन्ग, जो लीड सिंगर थे इस गाने के, कौन पहचाने जिन्होंने ये गाना गाया है, किस किन किन लोगों ने पहचाना इस आवाज को, और अगर नहीं पहचाना तो यहाँ मैं हूँ जहाँ पे आपको बताने वाली हूँ एक ये नाम जो कि आप अच्छे से जानते हो. इट्स जस्ट दैट अंडर रेटेड वॉइस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, मोहन कानन, जिनके गाने ना बड़े शानदार होते हैं. और कुछ हटके प्ले करने की कोशिश में आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू. होपफुली यू एंजॉय द लीड वोकल लिस्ट ऑफ बैंड अग्नि, जो कि एक जाने माने नाम है, लेकिन कम गाने सुनने को मिलते हैं इनके, तो इसलिए मैंने सोचा कि बैक टू बैक इन्हीं के गाने आज हो जाए, यानी कि ये और ये अगला गाना इनकी आवाज में, और बाकी जो कि सुप्रीमली रेटेड हैं, दैट इज एजी फिनटैक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US, एजी फिनटैक्स में मिस्टर अनिल गांधी और इनकी जो टीम है वो कमाल का काम कर रही है. Financial and tax services for the dynamic business owners that they are providing. चाहे आप वो individual या startup या established business की बात कर रहे हो, आप याद रखें कि AG FinTechs की बात फिर होनी ही चाहिए, क्योंकि innovative financial solutions इनके पास हैं, which is tailor to your unique needs. तो जरूर जाएं कि अगर bookkeeping, payroll, accounting, bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services की अगर आपको ज़रूरत है, they can certainly help you keep your finances very organized and compliant and absolutely future ready. तो देरी किस बात की, get in touch with them. And वो नहीं कहूँगी जो मैं हर बार कहती हूँ कि भाई आप बात ज़रूर करें, it is important to you know talk to them and see if you like what they are offering you. तो 4699429888. जी हाँ, कुछ बातें रिपीटेडली बताना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एवरी वन टू बी लिसनिंग, क्योंकि अगर अभी इस वक्त एक इंसान ने भी एजी फिनटैक्स के बारे में हमारे फनीशा नेटवर्क पे सुन लिया तो हमारा तो काम सच में समझेंगे कि सार्थक हो गया है. इसीलिए agfintax.com पे ज़रूर जाएं एंड मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विद देम, द राइट पीपल इन द बिजनेस. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. इट इज अबाउट शॉपिंग दैट आई वॉन्ट टू टेक ए सेगमेंट टू टॉक अबाउट. एक सेगमेंट भी छोटा पड़ेगा ऑनेस्टली जहाँ तक सवाल है शॉपिंग का. विल कंटिन्यू इन दिस सेगमेंट.

यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विद मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पे कुछ सुने अनसुने गाने मैं आप लोगों के लिए प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ. कुछ सुने अनसुने आर्टिस्ट, शायद आप जो होते ना, या हम जो होते हैं, ऐसा कहना चाहिए, जो हम पॉपुलर गानों को इंजॉय करते हैं बहुत, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो नए गाने सुनने के लिए बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं. उनके लिए भी जवाब है फन एशिया रेडियो 104.9 FM. लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर ऑन एन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, फन एशिया रेडियो पे हम बताने वाले हैं वो सीधा रास्ता आपके लिए कहाँ जाता है. इट इज़ सीमा मेहता लॉ ऑफिसेस जो आपको US परमानेंट रेसिडेंसी दिलवाने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे. द लॉ ऑफिसेस ऑफ सीमा मेहता, डू रिमेंबर, अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ. वो EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज हो, या फिर फैमिली या एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, या फिर पर्म लेबर सर्टिफिकेशन के साथ साथ ऑफकोर्स US सिटीजनशिप जिसकी मैं बात कर रही थी. और अगर इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, और आपके केस में व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट US परमानेंट रेसिडेंसी, ऑल ऑफ दैट कैन बी आंसर्ड इफ़ यू कैन ईमेल देम info@seemamehtalawfirm.com पे ज़रूर आप ईमेल करें, एंड दे विल हैप्पीली respond to your email for you to understand your options and see if you want to then continue with the law offices of Seema Mehta. Once again, thank you very much for tuning in, ladies and gentlemen. Shopping ke baare mein baat kar rahe hain, aur online shopping, oh gosh, let's be very honest, jab hum online store kholte na, hamare andar ka na wo monster jaag uthta hai, kyunki sara kuch cart mein add karne lagte hain, you know, ek ke baad ek, you keep adding, kyunki aapko pata hai ki wo aap nikal bhi doge, aur na iske aap पैर थक रहे हैं आपके, ना आपका पेट्रोल फूंक रहे हो आप घर पे बैठे बैठे, अमेज़ॉन पे धड़ाधड़ चीज़ें आप ऐड करते चले जाते हो, राइट. सो शॉपिंग का ये जो आजकल का तरीका हुआ है ना, ये एक्चुअली हमें और बड़ा मॉन्स्टर बना दिया है इसने, राइट. और साथ ही साथ मुझे वही लगता है कि पहले के दिनों में क्या होता था ना, जब हम पैसे से खरीदते थे, यू नो, दोज बिल्स व्हेन वी यूज टू टेक आउट ऑफ आवर वॉलेट एंड गिव, तो एक एहसास होता था. अब क्रेडिट कार्ड के चलते ना ये क्या हो गया कि इतने हम एवं जो खर्चे कर देते हैं वो उसी चक्कर में हो जाता है, क्योंकि हमें वो फील नहीं होता है, वो हाथ से जो पैसे काउंट करके देने का होता था ना, वो चीज़ समझ नहीं आती है, और इसीलिए हम ज़्यादा इंडल्ज कर जाते हैं. भाई महानुभावों ने ना, मतलब शॉपर्स की कैटेगरी बनाई है, वो क्या कैटेगरी है और वो कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, ये तो भाई आप ही समझ सकते हैं, जिसके बारे में बताने वाले इस गाने के बाद.

सनम ओ जिगर, तुम कहो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर को

You are tuned into Gupshup Gali with me too. और अगर आप अभी अभी ट्यून कर रहे हैं तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मोस्ट लिटरली गर्मी काफी बढ़ रही है और 12 बजने वाले हैं. 12 बजे से 8 बजे तक देर इज एक्सट्रीम हीट वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन DFW एरिया. तो पूरे पूरे प्रिकॉशंस लें, दिमाग को ठंडा रखें और फनीशा रेडियो सुनते रहें. अच्छा, शॉपिंग के बारे में बता रही थी आपको, है ना. शॉपिंग के लिए महानुभव ने बड़े कैटेगरीज बनाए हैं. उन कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो आप डिसाइड करेंगे. एक है रिसर्च साइंटिस्ट वाली कैटेगरी, कि एक छोटा सा अगर वाटर बॉटल भी खरीदना होगा ना, वो मतलब ऐसा करेंगे जैसे कि मतलब फ्रिस्को में एज ए घर ही खरीद रहे हो, यू नो. 500 रिव्यूज, 14 यूट्यूब अनबॉक्सिंग वीडियोज, ये सारा देखने के बाद ये जनाब या ये मोहतरमा, यार मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी, सो ये करेंगे अपनी शॉपिंग इतनी रिसर्च के बाद. इसीलिए ये रिसर्च साइंटिस्ट वाले कैटेगरी में आते हैं. इतनी रिसर्च तो भाई मतलब समझ लें कि नासा वाले भी मार्स पर जाने के लिए नहीं करते होंगे, इतना रिसर्च करते हैं. ठीक है, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ. और इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है, वो है डिस्काउंट डिटेक्टिव की कैटेगरी. जो ना वो तलाशते रहते हैं कि वो सही डिस्काउंट मिले तो हम खरीदेंगे, यू नो. दे हंट फॉर ए प्रोमो कोड लाइक इट्स होली ग्रेल. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू बाय शूज, यू वॉन्ट टू यू नो सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाई द परचेज, कि भाई 150 की चीज मैंने $30 में डिस्काउंट के साथ खरीदी है, उसका जो मजा है. ये मैंने भी किया एक्चुअली. आई रिमेम्बर मी एंड माई फ्रेंड वेयरिंग द सेम सैंडल एंड आई थिंक आई गॉट $10 चीपर एंड आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट. वो मतलब जो मेरी जो हील्स थे वो उसकी ना मतलब मेरी नजरों में प्राइस और बढ़ गई. यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM. भाई कैटेगरीज अभी बाकी हैं, सुनते रहें फनीशर रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: The name of the singer behind this is Fahim Abdullah, multidisciplinary Kashmiri artist, singer, songwriter और filmmaker भी हैं, जो सैयारा के title track के साथ बहुत बहुत मशहूर हुए. And जब अरिजीत सिंह ने retirement from Bollywood जो announce किया, तो लोगों को लगा शायद इनमें अरिजीत सिंह वाली बात हो सकती है. अब ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन पता चलता है कि शॉपिंग की कैटेगरी जो हमने बनाई थी, उसमें एक और कैटेगरी होता है इम्पल्सिव बायर्स का. जी हाँ, कुछ शॉपिंग रिलेटेड चीज़ें बात कर रहे हैं हम. आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं. भाई हैप्पी हो तो शॉपिंग, सैड हो तो शॉपिंग, बोर्ड हो तो शॉपिंग, ये वो कैटेगरी ऑफ इंसान होते हैं. ये वो ब्रीड है कि जो 10 सेकेंड की जो रील आती है ना इंस्टाग्राम में, उस पर कुछ शॉपिंग का देखा, वो इतना अच्छा लगा कि 3 दिन के बाद उनके घर पर होता है, भले वो 2 बार यूज़ किया हो उन्होंने. ये वो प्रजाति होती है. एक और प्रजाति होती है दैट अल्टीमेट बिट्रेयल वाली प्रजाति, कि हजारों चीज़ें आपने ऐड की अपने कार्ट में, शॉपिंग कार्ट में, और यू नो चेकआउट के टाइम पे, यानी कि ये वर्चुअल शॉपिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है यहाँ पे. तो जब आपने $500 का बिल बनाया एंड फाइनली आप जाते हो चेकआउट पे और पता चलता है कि शिपिंग फी 14.99 है, आप कहते हो कि क्या मैं मतलब $500 दूँ और उसके बाद ये शिपिंग फी भी कैंसिल, प्रोग्राम पूरा कैंसिल. ये भी एक बिरादरी होती है शॉपर्स की. सो यस, कुछ हम डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे आज शॉपर्स की कैटेगरी. आप किस कैटेगरी में आते हैं ये तो भाई आप ही जानते हैं. मैं जो जानती हूँ वो ये है कि अगला सेगमेंट इज दैट न्यू सेगमेंट दैट आई स्टार्टेड यस्टरडे, जहाँ पे कुछ नई ताज़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ. बी इट टेक, बी इट फूड, बी इट सॉन्ग, बी इट मूवी, बी इट एनीथिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मेरे रेडार में है तो वो बात आप तक जरूर पहुंचेगी. कीप लिसनिंग.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM, HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM, HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahu.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
1: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
15: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
16: बेटा, 95% आए?
17: हाँ मम्मी।
16: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
18: मेरा?
16: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
18: वो
19: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
21: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
22: Tracks that put you on the right track.

और धीरे धीरे हौले हौले वो जो भूख बढ़ गई आपकी ना, ये भूख आपकी खत्म हो सकती है तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जाके खाना हो तो ऐसा हो कि मन खुश हो जाए, है ना। इसीलिए नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स अगर आपको चाहिए तो तंदूरी फ्लेम जाएगी। अगर आपको वो तंदूरी कबाब, वो स्मोकी हॉट तंदूरी कबाब चाहिए, या वो मखमली करीज जो ये बनाते हैं वो चाहिए, तो फिर आप ज़रूर जाएँ तंदूरी फ्लेम। अगर आपको कस के भूख लगी और आप कुछ बहुत अच्छा खाना है तो जाइए तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज लोकेटेड इन गार्लिन। यू शुड नो बाय नाउ कि ये एक नॉर्मल मील को भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देता है, एंड ये वो जगह है, एंड दैट्स तंदूरी फ्लेम विथ अ बिट ऑफ होम स्टाइल पंच दैट यू विल गेट इन देयर फूड। तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट, तंदूर ही बन चुका है यार हमारा डैलस, और 12 बज चुके हैं, जिसका मतलब वो जो हीट एडवाइजरी आज के लिए, जो एक्सट्रीम हीट वार्निंग है, वो शुरू हो चुका है 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस। सो दिस सेगमेंट ताज़ा एंड न्यू दैट आई स्टार्टेड येस्टरडे, इसमें कुछ ताज़ा जो इस महीने लॉन्च किया गया है उसी के बारे में बात होगी इस गाने के बाद।

दैट वॉइस लेडीज एंड जेंटलमैन, किसे और क्या चाहिए अगर अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिल जाए, है ना। यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू। ऐसे ही नायाब अगर चीज आपको ज्वेलरी में चाहिए तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शुड बी योर डेस्टिनेशन। दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को ऑन प्रेस्टन रोड। ये वो जगह जहाँ पे आपको खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है, चाहे वो नेकलेसेस की बात हो, रिंग्स की बात हो, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, ऑल दैट इज मॉडर्न एंड contemporary and traditional as well that you can get at this. Find that perfect piece for your very special day. किसी भी तरह का celebration जिसमें चार चांद लगा सकता है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ज्वेलरी, जरूर याद रखें, इट इज इन फ्रिस्को। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM। ताजा एंड न्यू सेगमेंट दैट आई स्टार्टेड yesterday, उसी के चलते इस दिन यानी कि 22nd of July जो मैं बात करना चाहती हूँ, इट इज अबाउट दैट ब्रांड न्यू कॉन्वर्सेशनल टूल GPT 5.6, द स्मार्टेस्ट वर्जन बाय ओपन AI। इसके बारे में आप जानते हैं क्या? ये इसी महीने की बात है एंड दैट इज वाई दिस इज इन द सेगमेंट ताजा एंड न्यू। पहले वाले रोबोटिक Q&A चैट के बजाय ये अब बिल्कुल एक रियल ह्यूमन की तरह हमसे लाइव बात करेंगे। इट यूजेस ए फुल ड्यूप्लेक्स आर्किटेक्चर, मीनिंग इट कैन लिसन, स्पीक एंड इवन थ्रो इन अ क्विक रिस्पॉन्स ऑल्सो, जैसे कि आहा या आई सी all of that, you know, while you talk, you know, जैसे आप जैसे real में बातचीत करते हैं ना अपने friends से या किसी से भी, you know, कि बात के बीच में ही कुछ याद आ गया तो आप थोड़े से digress करके वो बात भी बीच में मतलब घुसा देते हैं अपने conversation में। तो ये चीज़ GPT 5.6 model जो है बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। You know, you can ask a completely different question while it is answering the question that you've asked earlier, मतलब ये सारी चीजें वो एक साथ हैंडल कर लेगा। इट विल लेट यू इंटरप्ट वाइल इट इज गिविंग आंसर टू योर प्रीवियस क्वेश्चन एंड गिव लॉजिकल रिएक्शंस विद आंसर्स टू द न्यू क्वेश्चंस दैट यू इंटरजेक्टेड इन बिटवीन, है ना, जो पहले नहीं हो सकता था। इफ यू रिमेंबर फॉर द अर्लियर मॉडल यू वुड हैव टू वेट फॉर द फॉर इट टू फिनिश इट्स आंसरिंग फॉर द क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड, और उसके बाद ही आप अपना अगला सवाल पूछ सकते थे, राइट। और इसीलिए ये नए मॉडल के साथ द इंटरेक्शंस आर गोइंग to feel, they're going to feel more human and more productive probably, right? To make things simple, they have split this powerful new brain into 3 distinct tiers, Sol, Terra and Luna, based on the complexity of the question. The GPT 5.6 family of models has rolled out globally some 10 days across a few different platforms for you to try out. तो अगर आपके पास चार GPT Plus, Pro, Business या Enterprise का subscription है तो आप इन models को directly अपने chat interface में select करके उसे use कर सकते हैं। This is for all of you to know also कि ये आपके लिए, ये तीनों जो मैंने आपके लिए बात की ना, Sol, Terra and Luna, ये models जो हैं आपके लिए Amazon Bedrock पर भी generally available हो चुके हैं, just for you to know, जहां आप इन्हें हाई परफॉर्मेंस Amazon वेब सीरीज वेब सर्विसेज जो है AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज चैट GPT 5.6 मॉडल दैट यू कैन एब्सोल्यूटली एंजॉय। दिस इज ताजा न्यू सेगमेंट, कुछ ताजा और न्यू एयरलाइंस की दुनिया में जो आया है वो बताने वाली हूं आप नेक्स्ट।

0: यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू। आपके पास ना अभी एक गिव अवे जीतने का मौका है, तो स्टूडियो का नंबर बिल्कुल हैंडी रख रहे हैं आप, 972-235-5555। अकॉर्डिंग टू एयरलाइन रेटिंग्स .com, आपको क्या लगता है कि एक्सटेंसिव पैसेंजर सर्विस को जो मद्देनजर रखते हुए ये रैंकिंग बनाई गई है, उसके हिसाब से नंबर वन एयरलाइंस कौन सी है? अगर आप ये मुझे अभी बता सके कॉल करके, तो मेरे पास आपके लिए एक कमाल का गिव अवे है, एंड इट इज डी वाइब रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी। फूडिस्तान वो जगह जहां पे की फ्रेश प्रोड्यूस, हलाल मीट, ग्रोसरीज, लाइव पानीपुरी स्टेशन, फ्रेश गन्ने के जूस का स्टेशन, और साथ में ये डी वाइब रेस्टोरेंट इनसाइड फूडिस्तान दैट यू विल फाइंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, यहां पे मुझे कॉल मिल रहा है, कॉल ले लूं पहले? ऑल राइट, कॉल कट भी गया, तो शायद कॉन्फिडेंस आया फिर चला भी गया। तो मुझे बताइएगा, अकॉर्डिंग टू एयरलाइन रेटिंग्स .com, विच इज द नंबर वन एयरलाइंस इन द वर्ल्ड दैट दे हैव रेटेड बेस्ड ऑन पैसेंजर सर्वेज। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू गेट टू दैट। इफ यू नो द आंसर, गिव मी अ कॉल टू विन फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड इन द मीन टाइम, यू नो, आई हैड समथिंग टू शेयर अबाउट दिस एयरलाइंस, जहां पे एक कन्वीनियंट कुछ एक आपके लिए फीचर ऐड किया गया है। All right, let's take you on air. बताएं आप अपना नाम।
1: Hey, hi, this is Priyanka.
0: Priyanka, have you won from D-Vibe before? I need to ask this.
1: No.
0: Awesome. So tell me, what's that number one airlines that airlines ratings has, you know, given this airlines to?
1: I think it's Delta.
0: It is not Delta. I'm talking about all international as well. So think about it.
1: Qatar.
0: Tell me again.
1: Qatar.
0: There you go. Yay. आप मेरी नंबर वन कॉलर हैं, एंड नंबर वन कॉलर को ये नंबर वन जगह से मिलता है दिस गिव अवे डी वाइब रेस्टोरेंट की तरफ से एक फ्री आइटम आपके लिए। प्रियंका, प्लीज होल्ड द लाइन फॉर अ बिट एंड आई विल गेट टू यू एंड आई विल गिव यू ऑल द अदर डिटेल्स एंड टेक योर डिटेल्स इन ऑर्डर टू गिव यू दिस गिव अवे फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट। तो जी हाँ, एक रेस्टोरेंट एक एयरलाइंस है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ, विच हैव कम अप विद दिस न्यू फीचर एंड इट इज इन द टॉप फाइव एयरलाइंस that they have rated. Number one pe Qatar, number two pe Cathay Pacific, number three pe Singapore Airlines, number five pe Korean Airlines, and number four jo maine miss kiya aur janbooch ke kiya, and it is Emirates, ladies and gentlemen, jinhone kuch ek naya introduce kiya hai. Let's talk about that in this segment, Taza and New, right after this song coming up for you.

ये अगली खबर जो है ना, ये बिल्कुल आपके मतलब की चीज है, क्योंकि क्या है ना, समझ में, हम इतना ट्रैवल करते हैं एंड जब हमारे वो ट्रैवल हमारे देश को होता है तो बाप रे बाप, हालत टाइट हो जाती है. लेट्स बी ऑनेस्ट, गेटिंग अ गुड नैप ऑन अ फ्लाइट विदाउट वेकिंग अप विद अ ब्रोकन नेक इज एक्सट्रीमली ए स्पोर्ट दैट आई कंसिडर इट एज. हम सब ने वो अजीब से नेक पिलोज ट्राई किए हैं, वो जो ना बिल्कुल टायर जैसे लगते हैं. बट गेस वॉट, एमिरेट्स इज फाइनली सेइंग डिच द पिलो एंड दे जस्ट अनवील ए टोटल गेम चेंजर फॉर इकोनॉमी क्लास, एंड ये है यू ड्रीम हेड रेस्ट. इसमें क्या नया है वो बताने वाली हूँ. इट हैज दीज अमेजिंग फ्लेक्सिबल साइड विंग्स दैट रैप अराउंड एंड सपोर्ट योर हेड कंप्लीटली, मीनिंग यू वॉन्ट बी बॉबलिंग अराउंड, आगे या पीछे आपका सिर नहीं गिरेगा. वो एक ऑकवर्ड सा, एक जो एक होता है ना, जो एक पोजिशन आपके सर का कि सर भी कहता है यार कहाँ लेकर आ गए, क्या कर रहे हो मेरे साथ. इट्स रोलिंग आउट ऑन द न्यू A350 एयरक्राफ्ट राइट नाउ एंड विल हिट द रेस्ट ऑफ द फ्लीट बाय 2027. दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस टू नो. और एक और जो खबर देनी है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस, जिन्होंने इकोनॉमी प्लस रोज विद नो मिडल सीट्स दैट दे हैव अनाउंस्ड, एंड एयर न्यूजीलैंड इज लिटरली पुटिंग बुकेबल बंक बेड्स इन इकोनॉमी क्लास. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब आराम से लेट के जाने का लेकिन इकोनॉमी प्राइस देने का मतलब क्या होता है. यही सब बातें तो शेयर करनी थी. ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट दैट वी हैव स्टार्टेड सिंस यस्टरडे. होप यू आर एंजॉइंग योर लिसनिंग एक्सपीरियंस विद अस हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM.

0: गेटिंग रेडी टू वाइंड अप माई शो लेडीज एंड जेंटलमैन. कल मुलाकात होगी 10 बजे. अप नेक्स्ट इज सिमी विथ आफ्टरनून अड्डा. शी इज गोइंग टू एंथ्रॉल यू टिल 2:30 लेडीज एंड जेंटलमैन. और आज के लिए मुझे इजाजत दें. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माई टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA Sudhir Pai, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए.
4: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
2: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ.
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ.
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ.
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
18: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
19: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.

अ वेरी गुड आफ्टरनून डैलस, आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। मेरा और आपका साथ होने वाला है अगले दो घंटे तक, तो लेट्स स्टार्ट दिस शो। आज का टॉपिक बॉलीवुड लवर्स के लिए, कभी आपने ऐसी कोई मूवी देखी हो जहाँ पे थिएटर्स में तो सीट खाली थी, क्रिटिक्स ने भी कहा कि एवरेज, यू नो रेटिंग्स भी खराब मिली, बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल मूवी फ्लॉप हुई, लेकिन आपके लिए वो पूरा का पूरा पैसा वसूल था, 5 स्टार देते हैं आप उसको रेटिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन्हीं बॉलीवुड मूवीज की जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप या फिर अंडर परफॉर्मर रही, लेकिन हम उन्हें आज भी बार बार देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो हिट नहीं हो पाती, लेकिन आपके लिए वो एब्सोल्यूट फेवरेट है, आपकी वॉच लिस्ट में रहती है, कभी कभी तो मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप पे भी डाउनलोड होती है। ऐसी कौन सी मूवीज है आप मुझे बताएं बाय कॉलिंग मी एट 9722355555 5555।

आज हम बात कर रहे हैं वैसी मूवीज के बारे में जो कि ब्लॉकबस्टर पे तो काफी मतलब कुछ खास नहीं कर पाई, हिट नहीं रही, बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन आप उसको बार बार देखते हैं, आपकी वो एब्सोल्यूट फेवरेट मूवी है। अभी भरत जी का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि जो लव शव द चिकन खुराना मूवी है वो उनको काफी पसंद है, बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, वो पूरी फैमिली एक साथ देख सकते हैं, इंगेजिंग है, आप थ्रू आउट कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड करीम का भी फोन आया था और उन्होंने तो पूरा कैटेगराइज कर रखा है कि जब वो खुश होंगे तो ये मन देखेंगे, जब वो दुखी होते हैं, जब वो उनको वापस अपनी कंट्री की याद आती है तो आ अब लौट चले देखते हैं, और रहना है तेरे दिल में भी उनको काफी ज्यादा पसंद है। वैसे मैं बता दूं कि जो मूवी थी रहना है तेरे दिल में वो भी उस टाइम उतनी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी जितने हम बाद में उसको याद करने लगे, उसके सॉन्ग्स इतने पॉपुलर हुए और वो ना एब्सोल्यूट एकदम रोमांटिक मूवी करार हुआ उस एरा का, सबकी फेवरेट रोमांटिक मूवी बन गई। और ऐसा ही हाल था तमाशा मूवी का, जब रिलीज हुई तो कोई थिएटर नहीं गया, थिएटर्स खाली थे, किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई, बहुत लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन अब उस मूवी के बारे में इतनी बातें होती हैं कि कितना थॉटफुल था और हर उस कॉरपोरेट जो है बंदे ने उससे रिलेट करना शुरू किया जिनका कि पैशन कुछ और था लेकिन पैसे के लिए वो कॉरपोरेट वगैरह में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी मूवी है, आप बताइए आपकी कौन सी ऐसी मूवी है जो शायद बहुत हिट ना हुई हो लेकिन आपको जरूर पसंद है। लेट मी नो बाय कॉलिंग मी एट 9722355555।

लेकिन बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। वहीं पे दूसरा जो लुटेरा था वहाँ पे पोएट्री वगैरह और यू नो इट्स बेस्ड ऑन बुक, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। अगेन बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। देन गोज अनजाना अनजानी, रणबीर एंड प्रियंका चोपड़ा की पेयरिंग थी। बोथ ऑफ देम आर लाइक फैंटास्टिक एक्टर्स, लेकिन वो भी नहीं चल पाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैड फ्रेंडशिप, हार्ट ब्रेक, ट्रैवल, इमोशनल, सारे के सारे जो एक ना मसाला डाल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्शन ऑफकोर्स, वो सब कुछ था। फिर भी मूवीज जो है कुछ खास हिट नहीं हो पाई। एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, मेरी प्यारी बिंदु, इन सारी परफेक्ट लव स्टोरी में एक इम्परफेक्ट स्टोरी थी, काफी यू नो अलग सी थी, फ्रेश फ्लेवर था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। बट मूवी के अलावा उसके सॉन्ग्स लोगों को काफी पसंद आए थे, और उन्हीं में से एक फेमस सॉन्ग है माना कि हम यार नहीं, जो कि मैं अभी प्ले करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए।

मुझे भी कुछ मूवीज के बारे में देख के पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई कैसे हुआ ये, ब्लॉकबस्टर पे फेल कैसे हुआ, हिट कैसे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद थी। ऐसी बहुत सारी मूवीज है, कुछ रोमांटिक मूवीज की नाम लूँ तो एक है फितूर, जहाँ पे मुझे विजुअल्स वगैरह काफी अच्छे लगे, म्यूजिक काफी अच्छा था, काफी इंटेंस लव स्टोरी थी, कश्मीर की वादियां थी।

वो लड़की तो यहाँ भी है फन एजर रेडियो पे 104.9 एफएम पे और मेरा नाम है आरजे सिमी। आज हमने बहुत सारी बातें की उन मूवीज के बारे में जो कि ब्लॉकबस्टर पे कुछ खास नहीं कर पाई, हिट नहीं हुई, लेकिन आपके दिलों में हमेशा के लिए बस गई, हम सबको काफी पसंद आई बाद में। तो आज के टॉपिक से एक बात तो क्लियर है कि बॉक्स ऑफिस के जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा डिसाइड नहीं करते कि मूवी अच्छी है या बुरी। कभी कभी मूवी थिएटर में फ्लॉप हो जाती है लेकिन आपकी पर्सनल फेवरेट बन जाती है। कुछ मूवीज हिट इसलिए होती हैं क्योंकि हर कोई जा रहा है उनको देखने के लिए, लेकिन कुछ मूवीज स्पेशल इसलिए होती हैं आपके लिए क्योंकि आपने उनको खुद डिस्कवर किया है विदाउट यू नो एनी गेटिंग एनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस टू वॉच इट। तो ऑफकोर्स वो मूवी तो ज्यादा स्पेशल होगी ना। इसके साथ हम ये सेगमेंट यहीं क्लोज कर रहे हैं और एक अमेजिंग सा गाना सुनने के बाद वापस आ जाइए क्योंकि मैं तैयार हूं अपने गिव अवे राउंड के लिए।

बात अगर फन पिज्जा किचन के पिज्जा की हो रही हो तो भाई तड़पना तो बनता है क्योंकि इतना अमेजिंग होता है ये। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप जो है नेक्स्ट गिव अवे में जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, तो आप कितने एक्साइटेड होंगे ना, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस जो क्वेश्चन है ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूं और आपको जवाब देना है मुझे कॉल करके, तो तैयार हो जाइए। बस एक छोटी सी शर्त है कि आप तभी पार्टिसिपेट करें अगर आपने ये गिव अवे जो है लास्ट वन मंथ में कहीं और किसी भी शो में फनेशिया के नहीं जीता हो। ठीक है, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन ये है आज का कि व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ सोडा इन स्कूल। आई रिपीट द क्वेश्चन, इट्स व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ सोडा इन स्कूल। आपको मुझे कॉल करके बताना है एट 972-235-5555।

नहीं, आप तो सब जानते हो, और जो क्वेश्चन था वो भी आपको पता ही था आंसर. काफी लोगों ने कॉल करके मुझे बताया. थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु कॉल्ड. सवाल ये था कि व्हाट इज सोडाज फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, और इसका जवाब है फिजिक्स. फिज. ओके. और जो आज की हमारी विनर है वो है सोनिया. सोनिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. और बाकी लोगों के लिए भी एक न्यूज है यार, हमारा दिल बहुत बड़ा है. अगर आप इस गिव अवे में नहीं जीत पाए तो क्या, आपके लिए एक और ऑफर है जिसके वजह से, मतलब जिसको अगर आप क्लेम करें, जिसको आप करें, तो आपको 10% ऑफ मिल सकता है आपके बिल पे. पूछो कैसे, मैं बताती हूँ. आपको इस फ्रेंडशिप डे पे अपने फ्रेंड्स के साथ एक सेल्फी खींचनी है, फन पिज्ज़ा किचन को टैग करना है ऑन इंस्टाग्राम, और आपको जो है बिल पे 10% माफ हो जाएगा. और या फिर आप एक फ्री गार्लिक ब्रेड भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है वो. और ये जो ऑफर है वो August 3rd तक ही है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल. एंड अगर आपको इस पे कोई और डिटेल्स चाहिए तो funpizzakitchen.com पे चले जाइए, ये उनका वेबसाइट है.

जरूरी नहीं कि ये जो इश्क वाला लव है वो किसी पर्सन से हो, हो सकता है आपका इश्क वाला लव एक आपका सपना हो, सपना अपना घर होने का। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार एक अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो लेकिन अपना होना चाहिए। तो इसमें आपकी मदद करेंगे ड्रीम होम मॉर्गेज, वो 1998 से फैमिलीज की हेल्प करते आए हैं उनके होम ओनरशिप का सपने को साकार करने में। इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो कि ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ बनाती है, स्ट्रेस फ्री बनाती है, और इनके पास सारे ना यूएस में जो 50 स्टेट्स हैं हर जगह के लाइसेंस भी अवेलेबल हैं। और अगर आप फर्स्ट होम खरीदना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर रीफिनेंस करना चाह रहे हैं, आप अपनी होम ओनरशिप की जर्नी विथ कॉन्फिडेंस स्टार्ट कीजिए विथ ड्रीम होम मॉर्गेज। उनको कॉल कर सकते हैं आप एट 972-245-5626 या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाइए विच इज ड्रीम होम मॉर्गेज.com।

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting, rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
4: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी एंड द शो इज द आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:37 और इस शो को बढ़ाते हैं आपका और हमारा साथ लगभग एक घंटे का और है, तो लेट्स स्टार्ट द शो। एक्चुअली वी आर नॉट स्टार्टिंग द शो, लेट्स कंटिन्यू द शो। एंड आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप लेके आई हूँ मैं फिलहाल, कि जो प्री डायबिटीज होता है ना उसके कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको फीवर हो गया या फिर कोई रैश दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा ना ब्लर्ड विजन, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है कि आपको जो है प्री डायबिटीज़ के सिम्टम हो, और ऐसे केसेस में रिएक्शन काम नहीं आता। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ दिखे एंड देन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर गेटिंग स्क्रीन्ड, आपको प्रोएक्टिव रहना है, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स करानी है ताकि आपका जो ये प्री डायबिटीज़ है वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाए और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सके, ताकि आपको जो है बाद में डायबिटीज़ वगैरह के रिस्क कम हो जाए। और ये था पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से हेल्थ टिप ऑफ द डे, और ये सब बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है दोस्तों।

अगर आपको तलाश है एक ज्वेलरी की जिसमें झलक हो ट्रेडिशन का, उसमें एलिगेंस भी हो और टाइमलेस ब्यूटी तो हो ही हो, तो आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स में जरूर जाइए। यहाँ आपको मिलेगा फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइन से लेके स्पार्कलिंग डायमंड्स तक, इंटीग्रेट कुंदन डिजाइन्स भी मिलेंगे और स्टनिंग है उनकी पूरी जो पोल की कलेक्शन है ना, काफी अमेजिंग है। हर एक पीस को क्राफ्ट किया गया है आपके स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको और स्पेशल बनाने के लिए। लोकेशन जो है वो है मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में, तो आप जरूर जाएं श्री कृष्णा ज्वेलर्स और वहां के कलेक्शन में आप जरूर चेकआउट करेंगे, क्या उनकी जो अमेजिंग ज्वेलरी डिजाइन है वो सब आपको काफी अच्छे लगेंगे, आई एम वेरी श्योर।

This part of our show is proudly brought to you by AJ Fintax, जो कि है one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. अगर आप एक individual है, आपका कोई startup है या फिर आपका एक well established business है, AJ Fintax के पास बहुत सारी ऐसी services हैं जिसके आपके business में या फिर आपकी tax savings वगैरह ले लीजिए और इन सब में आपकी बहुत ही मदद हो जाएगी. From bookkeeping से लेके payroll, accounting and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. ये सारे आपके finances को organize करने में, compliant बनाने में और future ready रखने में आपकी मदद करेंगे. काफी trusted हैं, efficient हैं और committed हैं आपके success के लिए. मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका success, इनका success. AJ Fintax आपका perfect partner बन सकता है in building a smarter and a stronger financial future. तो do call them at 469-942-9888 या फिर आप उनके website पे भी जा सकते हैं, which is ajfintax.com.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
9: Wo thoda overheating tha.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
16: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
17: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
18: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ अर्जित सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अडोर। अभी अभी हमने प्रभु देवा का अमेजिंग सा डांस वीडियो का सॉन्ग सुना मुकाबला। एंड आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, अगर आप नहीं जानते अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि यही प्रभु देवा लाइव आपके सामने आने वाले हैं इन डैलस ऑन August 1st, सैटरडे है उस दिन। एंड द लोकेशन इज टेक्सास ट्रस्ट सी यू थिएटर ग्रैंड प्रेरी इनके, और वो अकेले नहीं आ रहे, मतलब पूरी की पूरी मथांगी इंटरटेनमेंट ग्रुप ने एक अमेजिंग कलेक्शन लाया है डांस ग्रुप का, जिसकी वजह से ना पूरा कॉन्सर्ट बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायर होने वाला है। लॉरेन गॉटलिब आ रही हैं, सोनल भदौरिया भी हैं, एलेक्जेंडर नॉयल, हरिनी भी है, नताशा, सानवे, मेघना, हर कोई, इतनी सारे अमेजिंग, जो इनमें से तो काफ़ी लोगों ने ABCD मूवी में भी एक्ट किया हुआ है, तो यू विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज देम वंस दे आर इन द कॉन्सर्ट ऑन द स्टेज। और अगर अब तक अपने नहीं बुक किया है टिकट्स तो अभी भी कर ले, कॉल कीजिए एट 248-233-3828 या फिर आप फन एशिया के सोशल मीडिया साइट्स पे जाइए और वहाँ पे आपको पिंड पोस्ट मिलेगा जिसमें आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि भाई टिकट्स बुक करना कैसे है।

हाँ जी डोलना, अब वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का। अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलेगा फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका। तैयार हो जाइए, आपको बस मुझे कॉल करके सही जवाब ही तो बताना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये गिव अवे ना लास्ट 1 मंथ में फन एशिया के किसी भी शो पे जीता हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल सेट। मैं आप क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि वॉट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन वन कॉर्नर। वो क्या है जो पूरी दुनिया घूम सकता है और विदाउट लाइक लिटरली घूम सकता है बाई जस्ट स्टेइंग इन वन कॉर्नर। ओके, और इसका ना जवाब ये नहीं हो सकता कि इंटरनेट, मोबाइल फोन, कि यहीं बैठे बैठे यू नो सब कुछ, ऑल एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स। इसका जवाब होना चाहिए समथिंग दैट कैन फिजिकली गो अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इस बात का ध्यान रखिए और जवाब दीजिए मुझे बाई कॉलिंग मी एट 972-235-5555। और अब वक्त आ गया कि मैं सफ़ी के लिए उनका फेवरेट गाना बजाऊँ।

इट्स टाइम टू अनाउंस आवर गिव अवे विनर. हमने आपसे सवाल पूछा था कि व्हाट इज इट दैट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड बाय जस्ट स्टेइंग इन वन कॉर्नर, और इसका जवाब है स्टैंप, पोस्टल स्टैंप जिसको कहते हैं. एंड आज के हमारे जो विनर हैं वो है माविश मर्चेंट. कॉन्ग्रेचुलेशंस माविश, आपको मिलता है फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका. और बाकी लोग, अगर आप लोग भी वहाँ का अमेजिंग खाना ट्राई करना चाहते हैं, देन जस्ट Go to Preston Road in Frisco and enjoy the good food.

देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ हवा है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है, तब आप डॉक्टर को दिखाइए भाई, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जाइए, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है अपने डॉक्टर के साथ पूरे के पूरे आधे घंटे यानी कि 30 मिनट। और बाकी जगह जैसा नहीं है जहां पे आपको सिर्फ 5-10 मिनट में देख लेते हैं, फटाफट आपको डायग्नोस कर देते हैं, बिकॉज वी बिलीव एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर कि आपके हेल्थ को और ज्यादा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके। यू विल नॉट बी treated as a patient here, you will be treated like a family. तो अगर आपको annual physical checkup कराना हो, anxiety care हो रही हो, या फिर fibro scan for alcohol related concerns है, ये भी service available है, vitamins deficiency testing करानी है B12 या फिर दूसरे vitamins की, तो भी आप जाइए और वहाँ पे आप ये services भी avail कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आपको passion health primary care जाके पता चलेगा। अगर आपको appointment schedule करना है तो do call them at 214-666-6259. I'll repeat the number for you. It's 214-666-6259.

0: विद दिस आई हैव टू से गुड बाय टू यू, बट आप लोग कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी बहुत सारे अमेजिंग शो होने वाले हैं. कीप लिसनिंग टू फनी शो रेडियो 104.9 FM.
1: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं.
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं.
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं.
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
10: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
13: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
14: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Thank you Simi for an absolutely beautiful show. Financial रखता है आपको entertained as well as informed 24/7 365 days a year. हम रहते हैं आपके साथ और 972-235-5555 के थ्रू आप ही रहते हैं हमारे साथ. मैं हूं किरण आपके साथ मौजूद हूं 2:30 बजे से 5 बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे पांचों दिन आपके साथ रहती हूं इसी टाइम पे इसी रेडियो स्टेशन पे 104.9 एफएम चैनल. बिल्कुल चेंज मत कीजिए. आज है जी वेंसडे. एवरी डे आई ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू और वेंसडेज को तो हम टोटली जाम पैक्ड होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रोमांटिक मेलोडीज. वी आर गोइंग टू गो टू पॉप फ्रीक्वेंसी देन द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड देन ट्रॉफी ट्रैक्स एंड इन बिटवीन lots and lots of beautiful music.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs. Ji haan, they are one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Chahe aap individual ho ya you have a startup ya phir aap established businessman ho, AG Fintechs offer karta hai aapko innovative financial solutions jo ki aapki needs ke hisab se tailor kiye jate hain, from bookkeeping, payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance as well as financial reporting. Aur saath hi saath business advisory सर्विसेज भी एजी फिनटेक्स आपको प्रोवाइड करते हैं. तो ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हैं लुबे लुबाब इस सारी बात का ये है कि दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड कीप यू फ्यूचर रेडी. सो ट्रस्टेड हैं जी, एफिशिएंट हैं, कमिटेड हैं इन योर सक्सेस. तो आपको क्या करना है, एजी फिनटेक्स को अपना पार्टनर बनाना है इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल. कोई भी सवाल आपके जहन में ये सारी बात सुन के आया या वैसे कोई सवाल आपके जहन में आ रहा था अपने फाइनेंसिस को लेके, तो एजी फिनटेक्स से कॉन्टैक्ट कीजिए 469-942-9888 is that number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is agfintechs.com. You are tuned into romantic melodies right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran till 3 p.m. and then we'll move on to pop frequency.

पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली केयरिंग एंड सर्विंग आवर कम्युनिटी और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostic, और साथ ही साथ आपको मिलेगा Himalayan Med Spa services as well. तो ये एक आपके लिए कह लीजिए one-stop shop है, everything under one roof. कि CT scan कराने अब कहीं और जाना पड़ेगा, x-ray कराने कहीं और जाना है, diagnostics कराने कहीं और जाना, no. Primary care का ये Lunoxy Medical will give you everything under one roof. और अभी बात खत्म नहीं हुई जी, they are open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. for you. Every day खुले हैं और walk-in है आपके लिए, appointment भी लेनी जरूरी नहीं है. तो कहीं भी किसी भी वक्त आपको कोई सेहत की नासाजी फील हो तो all you have to do is walk-in to Lunoxy Medical.

जी हाँ, इस खूबसूरत गाने को ना कोई भूल सकता है और ना ये कभी मुझे लगता है कि पुराना होगा. इट विल ऑलवेज बी न्यू एंड ऑलवेज बी रोमांटिक. आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि अगर आपका कोई स्पेशल मोमेंट आ रहा है, जैसे कि एंगेजमेंट पार्टी आ रही है, एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन है, या यू जस्ट वॉन्ट टू पैम्पर योर सेल्फ और पैम्पर योर लव्ड वन, देन मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इज द प्लेस फॉर यू टू गो. प्रेस्टन रोड पे लोकेटेड हैं जी, फ्रिस्को में, और स्टनिंग ज्वेलरी है इनके पास. एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. ब्यूटिफुल रिंग्स से लेके एयररिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल. मुझे 100% यकीन है कि आप जब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जाएंगे तो कोई ना कोई चीज तो आपकी नजरों को, वैसे तो बहुत सारी मगर कोई एक पे सेटल आप जरूर करेंगे, कोई ना कोई चीज आपकी नजरों को जरूर भाएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड आपको देते हैं अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस. तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड को विजिट कीजिए फ्रिस्को में, और साथ ही साथ उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए. अपने ऐप स्टोर पे जाइए अभी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिखिए, उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू स्टे कनेक्टेड एंड फाइंड आउट द लेटेस्ट कलेक्शंस दे हैव टू ऑफर, द अपडेट्स, और सारी जो उनके स्पेशल्स चल रहे होते हैं, एवरीथिंग विल बी एट योर फिंगर टिप्स. दिस इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. सफी, दिस वन इज गोइंग आउट टू यू.

टेकन फ्रॉम द मूवी मसान सुन रहे थे आप. ये खूबसूरत किस्म का रोमांटिक गाना, बिल्कुल डिफरेंट. वो जैसे कहते हैं ना, कितनी सारी एनालॉजीज इसमें की गई, ट्रेन एंड पुल एंड थर थर आना, बट एवरीथिंग वॉज जस्ट ब्यूटिफुली पुट टुगेदर. अच्छा जी, मसान फिल्म के बारे में आपको बताएं कि ये एक 2015 में एक्चुअली रिलीज हुई फिल्म, जो कि डायरेक्टोरियल डेब्यू था नीरज घयवान का और साथ ही साथ एक्टिंग डेब्यू था विक्की कौशल का. फिल्म ने काफी पसंद किया लोगों ने फॉर द ऑथेंटिक portrayal of the life in Varanasi and its touching exploration of personal griefs and how people get along with different things that come along their way. To ye to hui aapke liye is film ki baat, aur ab aage badhte hue aapke liye agla gana lagane lagi hu. Lekin usse pehle ye batana chahti hu ki hamare bahut pyare listeners jo birthday celebrate karte hain apna, aapke liye aaj ke din jo special hota hai, aapke liye ek bahut pyara birthday ka gana aane wala hai, but in about 5 to 10 minutes. Stay tuned.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
2: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
7: तारीख पर तारीख।
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
10: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
9: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
11: जीनी, हुकम मेरे आका। हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
12: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
11: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
14: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
15: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और जी, हमारी बहुत प्यारी listeners और specially यास्मीन जी, जो अपनी birthday celebrate करती हैं, जिन्होंने कल अपनी birthday celebrate की, and many more of you, all the kids जो मुझे सुनते हैं, वो भी अपनी birthday celebrate करते हैं. आज के दिन, if you are celebrating your birthday, this song is going out to you, to all my special listeners.

जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. आज हम भी यहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर की. लेकिन वो बात थोड़ा सा आगे चल के अभी मैं आपको बताती चलूँ. वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी. लेके आऊंगी कुछ आपके लिए पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. 3:30 से 4 बजे तक इज द टाइम टू कनेक्ट यू विद द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. योर फेवरेट सेगमेंट ऑफ द डे विल बी एट अराउंड 3:35 to 3:40 से हम शुरू करेंगे. सो बने रहिए मेरे साथ. मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और साथ ही साथ कुछ आउटस्टैंडिंग एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक जो तो हमेशा मैं आपके लिए लेकर आती ही हूँ.

ड्रामा सीरियल तेरे बिन से सुन रहे थे आप ये गाना, और तेरे बिन के सेंसेशन को हम कैसे भूल सकते हैं जी। यू रिमेम्बर वहाज अली और यमुना जैदी का ये ड्रामा जो कि बहुत बड़ी हिट, बहुत बड़ा हिट हुआ था। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे। गिव अवे आया है नियॉन कैक्टस की तरफ से। सबसे पहले तो ये कि अगर आप जो है कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ अनप्रिडिक्टेबल ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर नियॉन कैक्टस इज द प्लेस फॉर यू टू गो। दिस इज वेयर मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस हैं, प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली डिलिशियस, पैक्ड विद बोल्ड एंड ब्रिलियंट फ्लेवर्स। और वाइब का तो क्या ही कहना जी, इट इज यंग, इट इज कलरफुल, इट इज मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी। सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, दिस इज द प्लेस फॉर यू टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर अ मॉम एंड अ डैड एंड लुकिंग फॉर नाइट आउट और यू नो चिल प्लान बनाना चाह रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दिस इज अ प्लेस फॉर यू टू हैंग आउट एंड ऑल्सो फॉर डेट नाइट्स। तो और जो मजे की बात है वो ये कि टॉप इट अप विद क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स हैं, हैप्पी आवर होता है जी उनका मंडे टू फ्राइडे, और स्पेशल डील्स तो हर रोज ही अवेलेबल होती हैं। सो जरूर चेकआउट कीजिए नियॉन कैक्टस को। और अब आपके पास टाइम है ये $20 का गिफ्ट कार्ड जीतने का, डाइन इन ओनली। सो यू विल हैव टू गो देयर डाइन इन टू अवेल दिस $20 गिफ्ट कार्ड इफ यू आर अ विनर। इफ यू हैव वन दिस गिफ्ट कार्ड इन द पास्ट 1 month, तो प्लीज वेट कर लीजिए, यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ। और अब सवाल, लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चन। बहुत ही कमाल के सिंगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उनका जी बर्थडे का आपने मुझे मतलब डेट बतानी है कि कौन सी डेट को करते हैं। दिस इज़ अबरारुल हक, जिन्होंने हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग गाने दिए, जैसे कि जो मैं अब आपके लिए लगाने वाली हूँ। दिस इज़ वन सॉन्ग दैट हैज़ ऑलवेज बिन अ सेंसेशन। 20-30 सालों से ये गाना सेंसेशन है, और इसी गाने और उसके बाद उनका जो अगला गाना था जैसे कि नच पंजाबन हुआ, वो तो अभी भी रीमिक्सेस बन रहे हैं उसके, अभी एक बॉलीवुड फिल्म में उसका रीमिक्स बना था। सो दीज आर सम ऑफ दोज आइकॉनिक गाने जो कभी पुराने नहीं होते। सो टेल मी 972-235-5555, what is the date of birth of Abrarul Haq? July के महीने में है, ये हिंट मैंने आपको दे दी।

जी हाँ, ये तो बिल्लो के घर जा रहे हैं, लेकिन आपका सवाल था कि किस किस ने जाना है नियॉन कैक्टस। जी हाँ, और आप सबने फोन कॉल्स करके अपनी पसंद का इजहार तो कर ही दिया कि हमने जाना है नियॉन कैक्टस, क्योंकि सवाल आपसे पूछा था कि अबरारुल हक की डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, जुलाई में करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट, एंड ऑल ऑफ यू गेव द राइट आंसर एक्सेप्ट अ फ्यू, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। करेक्ट आंसर है जी जुलाई 21st, 21 जुलाई 1969 इज हिज डेट ऑफ बर्थ। ही इज एन अमेजिंग सिंगर, सॉन्ग राइटर हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट हैं, और आजकल तो पॉलिटिशियन भी बन गए हैं, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम एज द बिल्लो दे घर सिंगर हु गेव अस अ सेंसेशन दैट इज नेवर गोइंग टू गेट ओल्ड। सो सबसे पहले मैं विनर अनाउंस कर देती हूँ। हमारी आज की विनर हैं मनीषा चौकसी। मनीषा, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने नियॉन कैक्टस की तरफ से ये $20 का डाइन इन गिफ्ट कार्ड। यू विल हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट, बट गिव अस 2 days बिफोर सो दैट वी कैन सेंड योर नेम in number to the restaurant, and then you will have about 5 to 6 days to go to the restaurant and avail your $20 dine-in gift card. Aur aap tamam log jinhone participate kiya, bahut bahut shukriya, thank you so much. Pani ji is tarah ke bahut sare giveaways aapke liye lekar aata hai. All you have to do is stay tuned and stay connected.

That was Chamkili for you. और अबरारुल हक पे आप भी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे और उन्हीं की बर्थडे को हमने सेलिब्रेट किया राइट नाउ. अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आकर मैं आपको देने वाली हूँ द टॉप थ्री ट्रेंडिंग ड्रामाज, टॉप टेन ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट. सो बने रहिए मेरे साथ.

0: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
9: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
8: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
9: Papri चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: आई एम सो स्ट्रेस्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
11: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
10: क्या मतलब?
11: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
10: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

And this is a special message going out to all the Texas business owners. And if you are looking for smarter commercial energy solutions, the right place to go is Tara Commercial Energy. They are proudly serving Texas businesses since 2002. Competitive rates hain unke paas ji, reliable service hai, aur customized energy plans aapke liye design karte hain aapki needs ke gird. So do visit or contact Tara Commercial Energy. Their website is taraenergy.com, taraenergy.com. Ya phir aap unhe call bhi kar sakte hain 844-428-2808. 844-428-2808 is that number. Aur ab waqt aa chala hai ji, aapko batane ga the top 10 trending dramas according to the TRP charts for last week, yani ke the week of July 13th till July 19th. अच्छा, कुछ नए ड्रामे इसके अंदर ऐड हुए हैं टॉप 10 की जो हमारी लिस्ट है. ऑल्दो जो टॉप 3 की हमारी लिस्ट है वो ऑलमोस्ट अनटच्ड रही है फ्रॉम लास्ट वीक. वही ड्रामे जो कि हम, मैं और आप इतने अरसे से पसंद कर रहे हैं, उन्हीं ड्रामों ने नंबर 3 टॉप 3 की लिस्ट बरकरार रखी. लेकिन नीचे जो आपकी है 4, 5, 6, 7 से लेकर 10 तक, कुछ नए ड्रामे, कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामे ऐड हुए हैं, कुछ नए शुरू हुए हैं, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो बने रहिए मेरे साथ. दिस इज और यू नो वो कहते हैं ना टॉप 3 टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद द सुनहरी किरण. 10वें नंबर पे जो ड्रामा आया, दैट इज अ न्यू एडिशन टू द लिस्ट, दैट इज मर्गे वफा. जी हाँ, ये ड्रामा शुरू हुआ है हम टीवी पे मंडे टू थर्सडे, ये 4 दिन आता है जी, और काइंड ऑफ आप सोप इसे कह लीजिए. 9 बजे शाम को मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस, एन एक्सट्रीमली वेल पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस, और हाईली एंटिसिपेटेड सीरियल था ये, जो अभी शुरू हुआ, अराउंड आप कह लीजिए कोई महीना हो गया ऐसे शुरू हुए हुए, लेकिन अब इसने टॉप 10 में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है. उसामा खान लीड एक्टर हैं, जबकि सबीन फारूक इसके अंदर लीड एक्ट्रेस हैं. सबीन फारूक जो है, देखिए वो काबली पुलाव वाली, अगर आपने काबली पुलाव देखा है तो आप फौरन पहचान लेंगे. साथ ही साथ मिर्जा जैन बेग. और कहानी है बेस्ड ऑन अ पॉपुलर नॉवल बाय आमना रियाज, और स्क्रिप्ट जो है वो फरहत इश्तियाक ने अपनी सुपरविजन में स्क्रिप्ट को दोबारा से रिक्रिएट किया है. प्लॉट इज एन इमोशनली चार्ज रिलेशनशिप ड्रामा फोकसिंग ऑन लव, लॉयल्टी एज वेल एज लाइफ ऑल्टरिंग चॉइसेस. और सेंट्रल थीम जो रिवॉल्व करती है वो अराउंड ट्रस्ट एंड हार्ट ब्रेक के गिर्द रिवॉल्व करती है. सो देखिए, आज हम एक नया ड्रामा आपकी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, मर्गे वफा. इफ यू हैवंट स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड यू आर थिंकिंग व्हाट टू वॉच, देन दिस माइट जस्ट बी योर नेक्स्ट पिक.

An absolutely beautiful number sung by Atif Aslam for the movie Actor in Law, जिसमें फहद मुस्तफा हमें नजर आए. अच्छा जी, back to the top 10 trending dramas. 10th number पे जो drama था वो मैंने आपको बताया. New addition to this list, that is मर्गे वफा. और नवे number पे जो drama इस वक्त stand कर रहा है इस last week, that is हमराही. Jio Entertainment पे Friday और Saturday को आता है शाम 8 बजे. और दानिश तैमूर इसमें हमें नजर आए साथ हिबा बुखारी. Although the drama when it started बहुत ज़्यादा इसकी हाइप भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रामा जो है वो ऑडियंस को टॉप 5 में नहीं, ऑडियंस उस ड्रामे को रख रही है टीआरपी चार्ट्स के हिसाब से. कहीं ना कहीं वो ड्रामा फॉल डाउन हो गया है 9, 8, 9, 10 पे. सो बट स्टिल यू नो इट स्टिल इन द टॉप 10. सो आप ज़रूर देखिए और खुद जज बनिए कि वेदर यू लाइक इट और वट इज़ योर रैंकिंग फॉर दैट ड्रामा. इसी के साथ जी आठवें नंबर पे जो ड्रामा है दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू एडिशन, जो कि पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते से दो हफ्तों से मैं इसको चार्ट्स पे देख रही हूँ. दैट इज़ मुहाफिज. एक थ्रिलर ड्रामा है जो कि फॉलो द स्टोरी ऑफ अ फियरलेस पुलिस ऑफिसर जो कि एक बॉडीगार्ड बन जाते हैं. एक वेल्दी, वो जो होती है ना बिगड़ी हुई पावरफुल आदमी की बेटी के बॉडीगार्ड बन गए हैं. और फिर क्या होता है, यही कहानी है जो कि जुनैद खान और मोमिना इकबाल हमें इस ड्रामे में देखने को मिल रहे हैं. एंड विद दैट द सातवें नंबर पे जो ड्रामा है ये भी एक नया एडिशन है टू द लिस्ट. एंड दिस ड्रामा इज आपकी इज्जत. ये शुरू हुआ है जी हम टीवी पे फ्राइडेज और सैटरडेज को 8 PM पे आता है, जिसे उमेरा अहमद, ओ माई गॉड, द रिनाउंड, द मोस्ट ब्यूटिफुल राइटर, मैं समझती हूँ वन ऑफ द टॉप राइटर्स उमेरा अहमद ने लिखा है. एक इमोशनल स्टोरी है जो एक्सप्लोर करती है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैरिज, इमोशनल निगलेक्ट एज वेल एज ट्रू मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट. तो ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जी 14 साल की शादी है ताबिश और बीना के दरमियान, जो ताबिश का रोल कर रहे हैं एहसन खान और बीना का रोल कर रही हैं उर्वा हुकैन. और फिर जो है वो किस तरह से उनकी जिंदगी चेंज होती है इन 14 सालों में. सक्सेस भी आती है, कुछ ना होने से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन रिश्ते कैसे बदल रहे होते हैं सारे असना में, यही सारी कहानी है इस खूबसूरत ड्रामे की. सानिया सईद भी आपको इस ड्रामे में नजर आएंगी. तो हम टीवी पे आ रहा है फ्राइडेज और सैटरडेज को 8 बजे शाम. ये तो हुई आपके लिए द टॉप 7, 8, 9, 10 हमने कवर किया. अब इस गाने से वापस आएंगे तो we'll talk about 4, 5 and 6 top charters.

चल रहा है जी ये द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स फॉर लास्ट वीक. और अब हम आ रहे हैं छठे नंबर के ड्रामे पे. दिस इज ऑल्सो अ न्यू एडिशन इन द लिस्ट. लॉट्स ऑफ न्यू ड्रामास हैज एडेड इन द लिस्ट. सो इट इज सो मच फन टू टेल यू द नेम्स एंड द कास्ट ऑफ ऑल दोज ड्रामास. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि आप क्या देखेंगे अगला, तो मैं बता रही हूँ आपको टॉप 10 क्या ट्रेंड कर रहा है. तपिश ड्रामा छठे नंबर पे आया है जी. ये जियो एंटरटेनमेंट पे एयर होना शुरू हुआ है मंडे एंड ट्यूसडे 8 बजे. स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड शाहजर जो कि मुनीब भट्ट जिसका किरदार अदा कर रहे हैं और शिफा जिसको लाइबा खान ने जिस रोल को प्ले किया है. सो शाहजर इज अ वेल्दी हेड स्ट्रॉन्ग मैन और ही कम्स यू नो ही क्रॉसेस पैथ्स विद शिफा. और फिर क्या होता है, शिफा इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वुमन जो कि इंगेज्ड हैं किसी से. और फिर शाहजर अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स कैसे शिफा के लिए डेवलप होती हैं और फिर कहानी आगे कैसे चलती है, दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा जो कि पिछले हफ्ते छठे नंबर पर रहा. पांचवें नंबर पे जो ड्रामा रहा दैट इज शैदाई जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है. प्रीमियर हुआ था ये April 22nd को और वेंसडे और थर्सडे को आता है शाम 8 बजे. फिरोज खान के फैंस वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू वॉच फिरोज खान इन दिस ड्रामा. ऑफ कोर्स जो लॉयल फैंस होते हैं वो हमेशा अपने यू नो फेवरेट एक्टर के साथ साथ चलते हैं और द फैंस ऑफ फिरोज खान आर लविंग इट. लेकिन कुछ थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज इस ड्रामे को ऑन एंड ऑफ में जो सुनने को मिलते रहते हैं. लेकिन यू नो आपको पता है कि क्रिटिक्स जो हैं वो कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं और कभी कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं. बट फिरोज खान एंड सहर हाशमी आर डूइंग एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल जॉब इन दिस ड्रामा, स्पेशली सहर हाशमी. अगर आपको ये ड्रामा किसी खास वजह से देखना है तो सहर हाशमी की एक्टिंग के लिए इसे जरूर देखिए. और चौथे नंबर पे जो ड्रामा इस

ब्यूटीफुल जॉब इन दिस ड्रामा, स्पेशली सहर हाशमी. अगर आपको ये ड्रामा किसी खास वजह से देखना है तो सहर हाशमी की एक्टिंग के लिए इसे जरूर देखिए. और चौथे नंबर पे जो ड्रामा इस हफ्ते स्टैंड कर रहा है, इट इज लाइक बहुत कम मैंने देखा है कि कोई सोप ऑपरा जो कि मंडे टू फ्राइडे हर रोज आता हो, वो ड्रामा इतने टॉप पे पहुंचा है और उसने अपनी जगह को बरकरार रखा है. दैट ड्रामा इज महनूर, जो कि इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन जो कि यू नो शी नेविगेट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ लाइफ चैलेंजेस और किस तरह से उनके सर्कमस्टांसेस उनके गेट चेंज होते हैं, लोग आते हैं उनकी जिंदगी में और कैसे वो लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करती हैं. दैट इज द स्टोरी ऑफ महनूर. और खदीजा सलीम हैं इसके अंदर, साथ ही साथ रुबीना अशरफ और हुमायूं अशरफ और उसके साथ जोया नासिर. ब्यूटीफुल ड्रामा ARY डिजिटल पे मंडे थ्रू फ्राइडे 9 बजे शाम को आता है. सो ये हुआ आपके लिए द टॉप 4 से लेके 10 तक हमने डिस्कस किया. आफ्टर दिस सॉन्ग आई विल टेल यू द टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑन द TRP चार्ट. स्टे ट्यून्ड.

0: कहा ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू एआरवाई डिजिटल फ्राइडेज एंड सैटरडेज को शाम 8 बजे एयर होता है. डॉक्टर बहू के बहुत चर्चे हैं. एवरीबडी इज लविंग द स्टोरी, रिलेटिंग विद व्हाट इज हैपनिंग टू डॉक्टर सानिया, जो कि एक हाईली अकॉम्प्लिश्ड एंड एम्बिशियस मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जिनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं व्हेन शी गेट्स मैरिड इनटू एन ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल फैमिली. फिर क्या होता है इज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर बहू. इसी के साथ सेकेंड पोजिशन भी बरकरार रखी पिछले हफ्ते की तरह ड्रामा सीरियल जंजीरे ने, जो कि आता है हम टीवी पे और एयर होता है जी वेडनेसडेज एंड थर्सडेज शाम 8 बजे. सज्जल अली और दानियाल जफर, ये तो दानियाल जफर तो आज आई थिंक हार्ट थ्रॉप बन गए हैं, नेशन के नेक्स्ट हार्ट थ्रॉप, जैसे बिलाल अब्बास थे पहले और उससे पहले वहाज थे, इसी तरह दानियाल जफर ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के हार्ट थ्रॉप बने हुए हैं. सो वॉच द ड्रामा फॉर द ब्यूटिफुल केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर्स. और पहले नंबर पर जिस ड्रामे ने अपनी पोजिशन को बरकरार रखा विद ब्रिलियंट एक्टिंग, सारे ही एक्टर्स सो कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं जी, मतलब अपने रोल अपने वो कहते हैं ना कि जितना उनको करना चाहिए उसे डबल खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं. दिस इज बस तेरा साथ हो. अनस फरहान सईद एंड अंसा सना जावेद, दोनों की केमिस्ट्री इज रियली गुड इन द ड्रामा, दैट द वे दे आर डीलिंग विद द फैमिली, दे आर हैंगिंग ऑन टू ईच अदर एंड हाउ दे आर गोइंग टू लीड अ हैप्पी लाइफ इज वॉट द प्रॉबेबली ड्रामा इज ऑल अबाउट. सो इट विल बी सो मच फन. अगर आपने देखना शुरू नहीं किया तो स्टार्ट वॉचिंग इट. दैट वॉज ऑल आई हैड. लेट्स हेड ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas, PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
13: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
13: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
11: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
9: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
13: कॉल 9728971530 firstunitedtexastitle.com
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
13: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
18: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
19: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
18: सच में सब संभालेंगे
19: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.
20: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun

And with that, we are going to head on to a short break with the top three trending dramas on the TRP charts. इस हफ्ते TRP charts के top three में कोई भी change देखने को नहीं मिला. जो मैं और आप पिछले हफ्ते हमने पसंद किया था, वही इस हफ्ते भी पसंद रही. Number three पे

टेकन फ्रॉम द मूवी सत्य प्रेम की कथा सुन रहे थे आप, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. और आगे बढ़ रहे हैं जी. आई हैव अ गिव अवे फ्रॉम यू ब्रॉट टू यू बाय मिराज लाउंज एंड वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू आवर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय मिराज लाउंज. मिराज लाउंज के बारे में आपको बताते चलें. प्रीमियम हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक और एक्साइटिंग डीजे नाइट्स, सब कुछ मिलेगा आपको मिराज लाउंज में. एंड द बेस्ट पार्ट इज हैप्पी आवर रन्स मंडे थ्रू थर्सडे सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक. ही कमाल का हैप्पी आवर है. फीचरिंग हुक्कास स्टार्टिंग एट जस्ट 24.99 एंड शॉट्स फॉर ओनली 4.99. प्लस बिल्कुल मिस मत कीजिए लेडीज नाइट. गर्ल्स, लेडीज, यू आर लिसनिंग, लेडीज नाइट होती है उनकी, चेक that night out. Or saath hi saath, if you are a college student, then they have college nights as well. You can imagine the vibe and the energy that they will have for you on college nights as well as ladies nights. They are located on McKinney Ranch Parkway. So Mirage Lounge should be on your list next when you are planning to go outside and eat something. Aur ab main aapke liye lekar aayi hu $20 ka giveaway card. आप कह लीजिए $20 ऑफ ऑन योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. सो आप जाएंगे मिराज लाउंज, यू विल स्पेंड $50 एंड यू विल गेट $20 ऑफ. दैट इज अ ब्रिलियंट डील, अबाउट 40% ऑफ. तो दो विनर्स मैं सेलेक्ट करूंगी जी. आपको मुझे कॉल करके बताना है. वेंसडेज का दिन हमारा थोड़ा ड्रामों को डेडिकेटेड होता है और थोड़ा सा हम पूछते हैं, बात करते हैं. पिछले हफ्ते भी हमने यही बात की थी एंड ब्यूटिफुल रिस्पॉन्सेज आए थे. यू गिव मी अ कॉल 972-235-5555 और मुझे बताइए कि आजकल कौन सी सीरीज, drama, it can be web series, it can be Pakistani drama, it can be Indian drama, it can be Hollywood drama, anything that you're watching and you would like to recommend that I should watch as well is what you can tell me. 972-235-5555. Call me and give me your drama recommendations.

मिराज लाउंज की तरफ से आपके लिए $20 का गिफ्ट कार्ड आया था ऑन अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 एंड वी वर इन कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स एंड योर रिकमेंडेशंस फॉर व्हाट यू आर वाचिंग एंड व्हाट वी शुड वॉच, वेब सीरीज, ड्रामास, जो कुछ भी आ रहा है. और हमारी जो लकी विनर हैं, ये दो नाम मैं अनाउंस करने लगी हूँ जी. प्लीज अगर आप सुन रही हैं तो गिव मी अ कॉल बैक. वन इज मारिया जिन्होंने खुदा गवा रिकमेंड किया एंड वन इज पलक जिन्होंने लॉकअप रिकमेंड किया. पलक एंड मारिया, इफ यू आर listening to me, please give me a call back 972-235-5555 so that I can take your personal information and forward it to Mirage Lounge. And to all of you who participated, what matters most was the recommendation. Thank you so much for the recommendations. And Fun Asia is tarah ke bahut sare giveaways aapke liye lekar aata hai. All you have to do is stay tuned and stay connected. Thank you.

0: पलक और मारिया अगर आप सुन रही हैं तो मुझे कॉल कीजिए सो दैट आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन. और ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं. ब्रेक पे जाते हुए आपको बताएं जी, सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे August 15th. 2 बजे ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा जी एट कमेरिका सेंटर फ्रिस्को. बेस्ट पार्ट ये है कि इट इज कम्प्लीटली फ्री और इंडोर्स है तो गर्मी की भी कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको. ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, साथ ही साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग भी और इनक्रेडिबल ड्रोन शो एंड फायरवर्क्स फिनाले भी होने वाला है. सो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस. IANT आनंद बाजार 2026. I will see you after the break. Stay tuned.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
6: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एज फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा.
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
8: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: It's Hoko.
5: अरे बस भी करो यार.
4: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
5: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही गोइंग होम.
9: दिस 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
10: Jud jao apni dharti se, desiyon ka sachcha radio channel, Fun Asia 104.9 FM.

एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी जरा हटके जरा बचके. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आई एम हियर विद यू फॉर अनदर हाफ एन आवर. 5:30 तक मैं आप 5 o'clock तक I'm sorry 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ, 2:30 बजे से 5 बजे तक. और अब लेके आई हूँ आपके लिए ट्रैफिक अपडेट. उससे पहले आपको बता दी चलूं, दिस अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा. तो सबसे पहले तो ये जी कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, एंड सेकंड लगता है एक्सीडेंट होने में, बट बहुत लंबा टाइम लगता है रिकवरी में. और उसके साथ इफ़ यू हैव टू गो थ्रू द इंश्योरेंस कंपनीज, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द निटिक्रिटीज ऑफ द सिचुएशन आर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. प्लस आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखना है. सो आप बिल्कुल इस स्ट्रेस में मत पड़िए. ऑल यू हैव टू डू इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम डू द रेस्ट फॉर यू. दे विल फाइट योर केस, हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. विन विन सिचुएशन है आपके लिए. इस मुश्किल और परेशानी के टाइम में राहत की खबर मैं आपको दे रही हूं. अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम मौजूद है आपके लिए इस मसले को सॉल्व करने के लिए. गिव दम अ कॉल, टॉक टू देम फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 4693005046 इज द नंबर. और वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं अटर्नी ओमर omar.com. और जैसे कि ट्रैफिक अपडेट आपके लिए आई है अटर्नी लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा की तरफ से, तो दो कोलिजन्स मुझे नजर आ रहे हैं. सबसे पहले देयर इज अ कोलिजन एट IH30 टुवर्ड्स सेंट पॉल स्ट्रीट वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड. अबाउट 40-50 मिनट्स पहले ये इंसिडेंट वेरीफाई हुआ है. सो देयर इज द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई एंड अ लॉट ऑफ बैकअप इज स्पॉटेड एट द स्पॉट. देयर इज अनदर कोलिजन दैट हैज बीन रिपोर्टेड अबाउट 40 मिनट्स अगो. दैट इज ऑन IH20 टुवर्ड्स US-67 वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 3 lanes are blocked out of 7, including an half exit lane, and the severity of this incident is reported high as well. These are all the 2 incidents that we have on the roads of Dallas on DFW right now for you. So wherever you are going, please be very vigilant and be wary of your surroundings and be careful.

0: और इसी के साथ आपको बताऊं जी, इंडियाज माइकल जैक्सन जिन्हें कहा जाता है, जी हां, प्रभु देव आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन एट NTFW. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग हिम टू यू NTFW. ज्वाइनिंग विद हिम इज लॉरेन गॉटलिब, सोनल बहादुरिया, साथ ही साथ अलेक्जेंडर नोएल, हारिनी, नताशा एंड सानवी मेघना. दिस इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट विच यू रियली रियली डोंट वांट टू मिस. जब इतने बड़े बड़े डांसिंग स्टार्स स्टेज पे मौजूद होंगे तो क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इस कॉन्सर्ट पे जाना पड़ेगा. हैपनिंग ऑन सैटरडे August 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर ग्रैंड प्रेरी. आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं बाय कॉलिंग एट दिस नंबर 248-233-3828 is the number to call and book your tickets. Proud media partner FunAsia Network. और आपकी tickets खरीदने के लिए हमने और आसानी कर दी है. FunAsia Network के social media pages को जाइए, उन्हें follow कीजिए और pinned post पे देखिए booking your tickets for this concert will be available. के वहाँ पे बहुत सारी आपको guide मिलेगी कि आपने कैसे book करना है, and it'll be very easy for you to book. So follow the social media pages of FunAsia Network. और इसी के साथ मैं दे रही हूँ आपको वेदर की अपडेट. आज है जी वेंसडे जुलाई द 22nd, 4:45 PM इन द स्टूडियो एंड सिटी ऑफ मिकनी में इस वक्त है 103 degrees. एंड डू यू नो हाउ मच इट फील्स लाइक? इट फील्स लाइक 121. मेरा ख्याल है मैंने अब तक, मैं 8 साल से आपके लिए वेदर पढ़ रही हूँ यहाँ पे, 8-9 साल हो गए, बट इतना हाई नंबर मैंने फील्स लाइक में कभी नहीं देखा. दिस इज अनबिलीवेबल. दिन रहा सनी हॉट विद हाईज अराउंड 102 और शाम जो है वो मोस्टली क्लियर रहेगी विद लोज अराउंड अपर 70s टू लोअर 80s होंगे. हम वेदर वॉच पे हैं, हीट वार्निंग पे हैं. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब आप बाहर निकलें, कुछ आपको आउटडोर एक्टिविटी करनी है, हाइड्रेटेड रहिए, सनस्क्रीन हैंडी रखिए, बिकॉज द यूवी इंडेक्स इज 11 विच इज एक्सट्रीमली हाई. पोलन काउंट आज का 5 है विच इज मीडियम. सनराइज आज का हुआ 6:32 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:32 PM. दिन लंबे हैं और गर्मी की शिद्दत बेतहाशा.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी.

0: एंड इट इज टाइम नाउ फॉर द रैप फ्रॉम माय साइड. कल मिलूंगी आपसे एक बार फिर विद वो 90s का बॉलीवुड. उससे पहले करेंसी अपडेट देते चलें. यूरो आज स्टैंड कर रहा है 0.87 पे विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.74 पे स्टैंड कर रहा है. इंडियन रुपी 96.57, कैनेडियन डॉलर 1.40, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.86 पे ट्रेड कर रहा है. नेपाली रुपी 154.59, जबकि बांग्लादेशी टका 123.41. बांग्लादेशी टकास आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स कंसर्न राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. मिलूंगी आपसे कल विद वो 90s का बॉलीवुड. स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया.
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया.
10: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो.
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. NMLS 2025289. लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजी
11: रॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है।
20: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
21: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
20: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
21: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
20: ये क्या होता?
21: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
22: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
23: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
24: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
25: BBC News with David Harper. The United States and Saudi Arabia have signed a landmark multi-billion dollar civilian nuclear power development agreement. Earlier, the US Secretary of State Marco Rubio sought to allay fears that it could eventually allow Riyadh to produce nuclear weapons.
26: When the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
25: The deal should provide billions of dollars for the U.S. nuclear industry and help soothe relations that have been strained by the Iran conflict. Gary O'Donoghue is in Washington.
27: We're looking at a 30-year deal to build civil nuclear capacity, in other words, for electricity purposes. And it looks as though what the U.S. normally demands in these deals, and it looks like they may have relaxed or be in the process of relaxing some of those requirements, does seem as if the U.S. may be allowing the Saudis to enrich uranium on their own soil. That's not something they've allowed with other countries like the UAE in the region when they've helped build nuclear capacity. And it looks as if they may be not insisting on a sort of as severe or strict inspection regime as they do when they help other countries build this kind of capacity.
25: Venezuela's ousted president Nicolas Maduro has been told by a New York judge he'll go on trial in his drug trafficking case in June next year. He appeared in court on various charges, including cocaine importation, narco-terrorism and possession of machine guns, which he denies. Protesters outside the court demanded his release from jail in New York. Ship tracking data has confirmed at least 7 oil tankers have changed course off the coast of Yemen since the Iran-linked Houthi group announced a maritime embargo against Saudi Arabia on Monday. The Houthis have not said how they would enforce their blockade, but there was further volatility in global oil prices. Here's BBC Verify's Thomas Copeland.
28: We've been looking and trying to understand the reaction from ships in the region. We've tracked 7 different ships that appear to have U-turned, moved away from where they were heading to, some within the Red Sea that were heading down further to the coast of Yemen and out into the Indian Ocean. They have turned the other way, now heading north to the Suez Canal. Others that are heading into the Red Sea, now waiting where they are. This is really significant. If shipping isn't able to use this key thoroughfare, it forces ships to go all the way around Africa, and that adds to costs, and that adds to costs to consumers where you are at home.
25: Iran's Revolutionary Guards have issued a counter-threat after President Trump promised the US would attack Iranian infrastructure every time Tehran fired on a ship in the Strait of Hormuz. Majid Mousavi, the commander of the IRGC's aerospace force, said Iran would cut off the electricity of US allies in the Middle East. Mr. Trump had threatened strikes against power and bridges. Tit-for-tat strikes have continued. World News from the BBC. Diplomatic efforts are resuming to find an end to the Ukraine war after a hiatus caused by the Iran crisis. President Zelensky said he'd spoken to President Trump's envoys, Steve Witkoff and Jared Kushner, about how to reinvigorate diplomacy. Ukraine, he said, had long been ready for peace. There's been no comment from Moscow. An American teenager has dropped his case against Meta, which alleged its social media sites had harmed his mental health. He claimed the company behind Instagram and Facebook had deliberately made its platforms addictive. Meta had been preparing to argue in a Los Angeles court that the plaintiff used its platforms for just minutes a day on average and only created accounts after filing the lawsuit.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio. Good evening to you all. This is, of course, your favorite station, 104.9 FM, bringing the community together. Main hoon Banda Bindas, Marvin Das, and I stay with you Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. It's 5:10 in the studio clock, 5:10. अगर यही मेरी हाइट होती तो मैं थोड़ा सा चलो ठीक है, लाइफ में बहुत खुश हूँ. वैसे हाइट होती तो क्या होता, जो है वो ही होता. हाँ, थोड़ा सा ऊपर से दुनिया दिखती और नीचे की चीज़ें जो हैं थोड़ी दूर रहती धरती से ना, तो ठीक है, जो भी अच्छा हुआ है. इट इज़ द 22nd of July एंड 7 बजे तक इस सफ़र में कुछ गाने आपके होंगे जी, कुछ मेरे होंगे. आई वांट टू थैंक द ऑलमाइटी, उस ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे और आपको एक और दिन दिया टू डू एंड लिव दिस वंडरफुल लाइफ दैट वी हैव. हम कई बार इतना इग्नोर कर देते हैं ना लाइफ को, मतलब समझते नहीं कुछ है. एंड वी जस्ट से हाँ ठीक है यार चल रहा है. नहीं यार, जस्ट लुक एट इट, यू आर ब्रीदिंग, यू आर एबल टू एंजॉय व्हाट यू ईट, यू आर एबल टू मीट द काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू हैंग आउट विद. हाँ, कई एपिसोड्स बुरे होते हैं, विच इज़ फाइन, बट एवरीथिंग इन लाइफ इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू हैव, टू लुक एट द ब्यूटिफुल कलर्स, टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, टू एंजॉय सर्टन जोक्स, टू लैफ, टू सिंग. आई थिंक लाइफ इज जस्ट सो ब्यूटिफुल. सो एंजॉय लाइफ, मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट इट, बिकॉज ये एक ही बार आनी है और इसमें सबसे बड़ी रिस्पेक्ट जानी है आपके अपने आप को. मेक श्योर टू थैंक योर सेल्फ एवरी डे फॉर ऑल द हसल, ऑल द बसल दैट यू गो थ्रू. फॉर नाउ इट इज दिस वन फॉर यू ऑल.

शाम का टाइम है भाई साहब, और अगर आपने धूप में बड़े पक्के हैं आप, आपको सम कॉकटेल्स मॉकटेल्स चाहिए, पेज 3 इज द प्लेस यू नीड टू बी, स्पेशली इफ यू आर इन फ्रिस्को, एलन, प्रिंसटन, मैकिनी कॉलोनी एंड प्रॉस्पर एंड यू नो ऑल दिस एरियाज, सलाइना, आपको इस हैंग आउट पर जरूर जाना है। दिस इज कॉल्ड पेज 3, इट्स ऑन 121 एंड एल्मा हब 121 के अंदर है जी ये रेस्टोरेंट, एंड दे हैव अ फुल सर्विस बार। पहले तो जगह बनाई बड़ी प्यारी है, मतलब चुम्मा सुपर इक्रम, आह देख के जगह को मजा आ जाता है। उसके साथ साथ उनका खाना अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया, मेरे कहने पे जाके वहाँ खाइए वड़ा पाव, जो कि गन पाउडर के साथ मिलता है। गन पाउडर मतलब वो सूखी चटनी, गन पाउडर मेरा वर्जन है। उसके साथ साथ आपने खाना है उनका कीमा पाव, या फिर खाइए उनकी नवाब रैनसम बिरयानी, या लेडीज पालक पत्ता चाट, वही मतलब जो मुंह में जाए क्रिस्प क्रिस्प, हल्की भी हो, आपकी सेहत पे कोई नुकसान भी नहीं, नो फैट चक्कर, यू नो छोटी सी चाट होती है, और क्या चाट होती है। बाद में टॉप अप करें जी उसको रबड़ी जलेबी के साथ, यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग एल्स। जाके चेक कीजिए जी पेज 3 ऑन बंदा बिंदास की रिकमेंडेशन, फिर बताइएगा कैसा लगा, मजाक नहीं खाना। विथ दैट आई एम गोना टेक यू वन मोर ट्रैक, उसके बाद लेने लगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बट एक बात नहीं समझ आती कि यार जब भी लेडी को गुस्सा आता है पति पे, तो बैग पैक करने में तो 10 मिनट लगते हैं, पिकनिक के लिए बैग पैक करने में इतना टाइम क्यों?

0: दिस सॉन्ग विल ऑल्सो लिव फॉर एवर इन आवर हार्ट्स से काफी टाइम तक ये गाना जो है जी बहुत रिक्वेस्ट किया गया एंड जब भी लगाते हैं इट गिव्स यू अ गुड फ्रेश फ्लेवर. But if you're in Grand Prairie and you're looking for some desi flavors, then आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है जी. Grand Prairie के लोगों के लिए आ चुका है एक बड़ा बहुत बड़ा solution. Because I know people in Grand Prairie जो वहाँ रहते थे Mansfield में रहते थे उनके पास देसी grocery stores की option बहुत कम थी. तो now you have Nepali's Indian Himalayan Bazaar which is now open for you 5103 Magna Carta Boulevard. This is in Grand Prairie right off of 360 and Highway 20. बहुत पास है वहाँ से सारे grocery essentials. उसके साथ साथ meat and for Nepalese people if you like that water buff you get it there as well. फ्रोजन फूड्स हैं उसके साथ साथ फ्रेश सब्जियां एंड सारे स्नैक आइटम्स भी अवेलेबल हैं. दे ऑल्सो मेक फ्रेश टी पकौड़ाज एंड समोसे राइट देयर फॉर यू. मेक श्योर टू चेक आउट द नेम हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी. जस्ट गूगल दैट. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आया बट गूगल हिमालयन बाजार ग्रैंड प्रेरी.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं.
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं.
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं.
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज visit agfintax.com. call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
10: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: अरे यार, घर मिल गया.
13: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
14: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
13: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
14: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
15: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today.
16: Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
17: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
16: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिस ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
18: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

बड़े लोगों के पास ना एक प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं ईगो, ईगो नॉट दी इको एनवायरमेंट, नहीं ईगो, ईगो जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कई लोगों में। और ईगो जब होती है ना तो आप सिर्फ मुंह फैला सकते हो, ठीक है, जब आपके पास ईगो होती है तो आप मुंह फैला सकते हो। अगर आपके पास इनो हो तो आप केक से लेकर ढोकला सब कुछ फैला सकते हो ब्रदर। बंदा ये बिंदास है, बातें करता खास है। और अगर आप ईगो की जगह इनो का इस्तेमाल करने लग पड़ो तो देखो लाइफ कितनी ठीक हो जाएगी ना। इनो से बनाओ आप क्या केक, इनो से बनाओ आप ढोकला, बट जो भी बनाओ ना जिंदगी में अच्छा बनाओ, और किसी का कोशिश करो बेवकूफ ना बनाओ। Welcome back to your evening drive time show right here on Fun Asia Radio. Today marks the birthday of Vishal Malhotra. Vishal Malhotra वो थे जो हमारे डिज्नी के बचपन के मतलब लीडर थे ना, डिज्नी हॉटस्टार पे एक शो आता था जिसका नाम था डिज्नी आवर 1995 में, और उसके बाद टीनेजर बने जी हिप हिप हुर्रे फिल्म आई थी, फिर डिज्नी टाइम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे शो आता था 2004, एंड देन एक सीरीज भी आई विकी एंड वीटल, और उसके साथ साथ इश्क विश्क फिल्म में थे विच वॉज द कौन से वो हमारे शाहिद कपूर वाली फिल्म, उसके साथ साथ किस्मत कनेक्शन में नजर आए, नकाब में नजर आए, सलाम इश्क, काल, डोर एंड मेनी अदर्स। टुडे इज हिज बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस चाइल्ड हमारे टाइम का जो 80s में पैदा हुए उनके टाइम पे ये जल्द ही मतलब हमारे 6, 7, 8 years, 9 years की उम्र में ये TV पे आना शुरू कर गए थे। विशाल मल्होत्रा इनका नाम था, गुड अच्छे इंसान लगते हैं हमारी तरफ से, इनको जन्मदिन की हो मुबारक। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG Fintax। टैक्सेस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, और सिर्फ AG Fintax की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाइए, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड, चाहे आपके बैक टैक्सेस का प्रॉब्लम है, आपने काफ़ी देर से टैक्सेस नहीं भरे हैं, आपको चाहिए कि रिटर्न ज़्यादा हो, आपके बिजनेसेस हैं, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स, they will do it all. And if you're looking to get your retirement planning done, या आप investment करके उसके results देखना चाहते हैं कैसे होते हैं, when it comes to getting retirement plans, moving 401ks, all of that is done by them. And that is one and only name to remember, जिसका नाम क्या है जी, नाम है जी उनका वही agfintax.com, taking you to a track. उसके बाद आके कुछ important बात करते हैं, but for now, let me take you to this one.

0: तेरे बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं हो लबना। एक जनाब फरमा रहे थे कि सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, और फिर मौत के खौफ से, खुदा से। किसी ने टोका, सर वो बीवी का नाम नहीं लिया। कहता, डर के मारी तो नहीं लिया।
1: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देयर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
8: तोहफा हो या यादें, पहुंचाइए प्यार। इंटरनेशनल शिपिंग मेड सिंपल विद SFL Worldwide. SFL Worldwide, डिलीवरिंग कनेक्शंस एंड स्माइल्स।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

टेकन फ्रॉम द मूवी धमाल 4, मतलब दिमाग का दही है ये फिल्म. अगर आपने देखी है तो आपकी आपको सलाम है, क्योंकि मैं ये पूरी फिल्म देख ही नहीं पाया. बट नॉनदलेस, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे आपसे ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज गेटिंग योर वेल्थ सिक्योर्ड फॉर योर लव्ड वंस, जिसको आपने पास ऑन करनी है सारी वेल्थ. देखें, अगर आप सही प्लानिंग नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट डू स्टेट प्लानिंग, इफ़ यू डोंट यू नो डिसाइड वेयर योर फंड्स आर गोना बी गोइंग, हाउ दे आर गोना बी डिस्ट्रीब्यूटेड योर एसेट्स. एंड आई नो कि यू नो समटाइम्स इट फील लाइक क्या बकवास कर रहा है यार आदमी, मतलब आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आई लव इट एंड आई नो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट दीज थिंग्स जस्ट कम अनप्लान्ड. एंड इफ यू हैवंट डन योर प्लानिंग, एनआरआई वेल्थ की दीप्ति वर्मा से आप इन टच कीजिए, बिकॉज शी विल गेट एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ. nriwealth.com इज दैट वेबसाइट. दैट्स nriwealth. NRI जैसे आप लोग सारे हैं, वेल्थ जैसे आप लोग सबके पास है. सो nriwealth.com इज दैट वेबसाइट. द फोन नंबर 669-243-5799, nriwealth.com once again is that website for you. एक गाने की तरफ आपको ले जा रहा हूँ. इसी के साथ साथ आई हैव अ गिव अवे कमिंग अप फॉर यू, एंड दिस इज फ्रॉम फन पिज्जा किचन राइट हियर इन द कॉलोनी. दे आर गिविंग यू $10 ऑफ, $10 ऑफ नहीं, एक्चुअली $10 का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं आपको, विच यू कैन यूज टूवर्ड्स एनी परचेज एट फन पिज्जा किचन. नाउ दिस इज फॉर देयर फ्रिस्को लोकेशन, लोकेटेड एट 121 एंड कस्टर रोड. अब मैं लगा रहा हूँ वो गाना जिसका देना है आपने मुझे जवाब एज टू विच सिंगर इज सिंगिंग दिस सॉन्ग. ही ऑल्सो हैपन्स टू बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. तो मैं लगाता हूँ गाना और आप मुझे बताइए ये आवाज किसकी है. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और हाँ, वो असूल बदले नहीं है, मैं दादा के ज़माने का लड़का हूँ, मतलब दादा से सीखता है, असूलों पे पक्का रहना चाहिए. तो कॉलर नंबर 3 जो देगा सही जवाब ले जाएगा ये फन पिज्ज़ा किचन का गिफ्ट मैन. और हाँ, एक और बात ये है भैया कि ये जो गिव अवे है फ्रिस्को का है, तो जाइए वहाँ जाके खाइए तभी पार्टिसिपेट कीजिएगा, वरना काहे को तंग करेंगे भैया, किसी और को गिव अवे देंगे. अगर आप रहते हैं आर्लिंगटन में, फ्रिस्को आपने आना नहीं, काहे को. So if you want to participate, make sure you go to Fun Pizza Kitchen in Frisco.

0: ऑलराइट, लेट मी गेट टू द कॉल्स हियर. मैंने पूछा है आपसे कि इस सिंगर का नाम क्या है. इफ यू गिव मी द राइट आंसर, कॉलर नंबर 3, दिस इज कॉलर नंबर 1. व्हाट्स योर नेम?
1: हाय, माय नेम इज कृषानु बर्दन.
0: तुषालु जी, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिंगर यू थिंक? क्या नाम है इसका?
1: अरमान मलिक.
0: अरमान मलिक कहते हैं आप?
1: Yes.
0: All right, I'll lock that in for you. Let me see who's on number 2
2: here. Radio
0: का volume, radio का volume कम कर, radio का volume कम कर लो ना बड़े भैया या दीदी, काय को तंग कर रही हो यार. हेलो,
3: कर दिया सर जी.
0: हाँ बड़े भैया, काय को तंग कर ले हो, लोगों को भी, मुझे भी. नाम बताइए अपना सर का.
3: अरुण.
0: अरुण के अरुल.
3: अरुण.
0: अरुण. अरुण जी, नाम पता है सिंगर का?
3: जी अरमान मलिक.
0: अरमान मलिक कहते हैं. अरुण जी, देखता हूँ तीसरे नंबर पे पायदान पर कौन है हमारे साथ. गुड इवनिंग फनेसिया, कौन बोल रहे हैं भाई?
4: जी मैं दीपक बोल रहा हूँ. कितने नंबर पे?
0: दीपक बोल लिया है. दीपक जलता भी है और दीपक बोलता भी है. ये तो 2-in-1 वाला दीपक है. आपकी बीवी तो बहुत खुश होगी आपसे. दीपक जी, जी बताइए सिंगर का नाम.
4: ये जी है अरमान मलिक.
0: अरमान मलिक है ये. फिर इसको जा सकते हैं आप?
4: जा सकता हूँ.
0: फिर करें जी मुबारकबाद अपने आप को खुद दे लीजिए. बिकॉज यस, इट इज अरमान मलिक सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. स्टे ऑन द लाइन, आई विल टेक योर डिटेल्स ऑफ द एयर. यस, इट इज इंडीड द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ अरमान मलिक एंड द वे ही सैंग दिस सॉन्ग इज परफेक्ट. अरमान मलिक, इंडियन प्लेबैक सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर. एंड इनका जो करियर स्टार्ट हुआ था, दैट वॉज एज अ चाइल्ड वोकलिस्ट इन बॉलीवुड. उसके बाद बम बम बोले फ्रॉम द मूवी तारे जमी पर उन्होंने गाया. उसके बाद कच्चा लिंबू 2011. Then, of course, associated with Universal Music India and T-Series, many other movies and many other songs. Today, we are celebrating him. A very happy birthday to Arman Malik from the team at Fun Asia Radio and from Banda Bindas. Congratulations to our Deepak Bhai, who are still drinking and talking. And now we will eat pizza bhi at Fun Pizza Kitchen, Frisco and Colony. Two locations for you. Ek aur gana from this lovely actor. Let's celebrate him a little more with the next track here.

पहला पहला प्यार है मेरा इन द वॉइस ऑफ अरमान मलिक. वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर अरमान मलिक. बहुत सारा काम इन्होंने किया है जी. ऑफ कोर्स सिंगिंग कंपटीशन से करियर शुरुआत है विद सारेगामा पा लिटिल चैंप्स वेरी फिनिश्ड एट्थ. उसके बाद द म्यूजिकल डायरेक्टर्स एंड म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय के साथ एज अ चाइल्ड सिंगर बम बम बम बोले तारे जमी पर फिल्म एंड देन द मेनी अदर्स दैट यू नो ऑफ. बट मैं कह रहा था कि प्यार सबसे पहला अपने आप से करना जरूरी है भैया. एंड इफ यू लव योर सेल्फ एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, जैसे कि बॉडी एक आपकी बैक एक आपके नीज में पेन रहता है, यू जस्ट डन सर्जरी विच हैज रिप्लेस्ड ज्वाइंट और एनी मेटल इम्प्लांट्स इन योर बॉडी, देन यू नीड फिजिकल थेरेपी. फिजिकल थेरेपी के साथ साथ इवन फॉर सर्टन पेन्स एंड एक्स, लाइक आई सेड, अगर आपके पेरेंट्स हैं ओल्ड हैं उनके गोड़ों में दर्द रहता है, दवाइयां खाने से पहले आई वुड रेकमेंड यू गो टू अ प्लेस कॉल्ड टेक्सस स्टार रिहैब. द वेबसाइट इज टेक्सस स्टार रिहैब डॉट कॉम. इसको चलाते हैं एक इंडिविजुअल जिनका नाम है रुशी. ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट हिमसेल्फ एंड ही इज ऑल्सो द फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क एंड द अदर क्रिकेटिंग प्लेयर्स दैट प्ले फॉर एनएलसी. ही क्योर्ड मेनी इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड अदर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज एंड नाउ दैट सेम केयर इज अवेलेबल फॉर यू. अर्विंग में एक लोकेशन है, दूसरी फ्रिस्को में है. चाहे आर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरीज हो या फ्लोर थेरेपी हो फॉर योर पेल्विक, मसाज थेरेपी, जेनरेटिक रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रेड लाइट थेरेपी, all of that is available with them. All you have to do is just log on to the website texasstarrehab.com. Two locations, which is once again in Irving, right off 635 in Beltline, and the other one is a brand new center that they just opened up, which is state of the art, and that's where you can get all of these facilities, like any of the red light therapies or the functional nutrition, massage therapy, pelvic floor therapy, and many more. All you have to do is make that choice. Ke yaar nahi, I'm not going to eat those medications. I'm not going to let my parents eat those medications, and I'm going to take them to Texas Star Rehab. One more thing I want to tell you, that if you are going through a surgery or you know anybody and they need the after surgery therapy, which is the most important thing you can do for yourself, they do that as well, and they are the best at it. I've personally used them. I've personally been a big fan of what they do, and I know that they can change your life as well. TexasStarRehab.com is that website. We're heading to a short commercial break. Break ke us par bahut sara aur fun aa raha hai, to kahin mat jaiye. Saath saath aapko ye bata dun ki prabhu

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
2: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
3: तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
0: हे मैप्स टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर
4: कैलकुलेट Rerouting.
0: अरे ये क्या मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है
4: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
0: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
0: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
9: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
0: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
0: फूडिस्तान इन ऑबरी Everything desi, one place, one vibe.
10: Hi, this is Varun Sharma, and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: इसमें जो सिंगर है उसे रिहाना बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बिंदास बोलो,
1: That is right, Bindas Bolo, right here on Fun Asia Radio. This is your evening drive time show, The Bindas Show, with your host, Bindas, Bindas Marvin Das, 6:05 in the studio clock, 6:05 ho chuke hain, Wednesday ki sham hai ji, yani ki midweek, we are already here, July 22nd tarik, aur 22 tarik na badi special hai, par sabse special 22 tarik hoti hai, April 22nd, ab wo kya hai, wo pata lag jayega aapko waqt ke saath saath, khair, I'm gonna be with you till 7 o'clock this evening. Birthdays, anniversaries, all are welcome on our station. कहते हैं जी खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है, गम जो है कम होता है. If you want to share your gum, then no problem. मैं किताबें मंगवा लूँगा और कवर मंगवा लूँगा, दोनों बैठ के गम निकाल के कवर चिपका लेंगे और जोड़ लेंगे. गम, समझ रहे हो ना, वो ब्लू कलर की बॉटल आती थी, उसमें ब्रश वाला हैंडल होता था. खैर खैर खैर, मज़े की बातें बताऊँ आपको. मज़े की बातें ये हैं भैया कि इस शहर में बहुत कुछ होता रहता है, और आपने अगर प्रभुदेवा इवेंट की टिकटें लेनी है तो आपको जाना है फन एशिया के सोशल मीडिया पे, एंड वहां जाके आप सिर्फ सर्च कीजिए प्रभुदेवा लाइव इन डैलस, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय वैनेसा इवेंट्स. अब अगर आप कोई भी इवेंट अपना प्लान कर रहे हैं, चाहे शादी है, ग्रेजुएशन है, बड़े से छोटा इवेंट, वैनेसा इज द नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर. दे विल ब्रिंग एवरीथिंग फॉर यू, मतलब हर चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी. भाभी को स्पेशली जो स्ट्रेस रहता है ना कि ओ माय गॉड, वो डेकोर वाला पता नहीं कहाँ चला गया, अरे वो कुर्सियाँ ठीक से नहीं लगी हैं, अरे वो खाना कौन लेके आएगा, चिंता नहीं है भाभी, चिंता नहीं है. वैनेसा इवेंट्स पे हरी साहब को कॉल कीजिए, 4694428770, 4694428770, नहीं तो ये नंबर हमारे से ले लीजिए. चाहे आप कोई हाउस वार्मिंग कर रहे हैं, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डेकोर से लेके केटरिंग, वेन्यू, लिटिल डिटेल्स दैट यू लुक आउट फॉर, दे विल हैंडल इट. दैट्स वैनेसा इवेंट्स, ब्रिंगिंग द इवेंट प्लानिंग टू यू एंड ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस. चाहे वो वेन्यू सिलेक्शन हो, ब्यूटीफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स हो, फोटोग्राफी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, या डिलिशियस केटरिंग सर्विसेज बाय द रिनोन्ड बसेरा ग्रैंड. हरी इज द पर्सन यू नीड टू कॉल. And the name that you need to remember is Vanessa Events. एक गाने की तरफ ले जा रहा हूँ, उसके बाद we are going to celebrate a birthday of this legendary singer. Who is he? वो बताता हूँ आपको. पहले let me take you to this track right here on Fun Asia. तूफानी बारिश में ना आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया. पिज्जे की दुकान वाला बोलता है, सर आप शादीशुदा हो? आदमी कहता है, तुझे कैसे पता? कहता है, मालिक कौन सी माँ अपने बेटे को तूफान भरी रात में पिज्जा लेने भेजेगी.

लाल परी का तो पता नहीं, पर अगर आप ग्रैंड प्रेरी में रहते हैं या मैंसफील्ड में रहते हैं, टुवर्ड्स आर्लिंगटन रहते हैं, देन आपको इंडियन ग्रोसरीज के लिए अब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमालयन बाजार आपके लिए वहां खुल चुका है जी, राइट ऑन 360-20 इंटरसेक्शन के बिल्कुल पास। आई एम गोना गिव यू द एड्रेस आल्सो, बट आपको ये बता दूं कि दिस इज वन स्टॉप शॉप। चाहे आपको इंडियन ग्रोसरीज चाहिए हो, यू नीड फ्रोजन स्नैक्स, यू नीड मीट फॉर योर नॉन वेजिटेरियन पीपल दैट ईट मीट, यू गेट ऑल द मीट देयर, एंड फॉर माय नेपाली brothers and sisters, if you like your water buff, then you get that there as well. Uske saath saath they are offering free delivery on $50 or more ke order pe, $50 ke order pe bilkul free delivery milegi if you live in a 5-mile radius from Himalayan Bazaar in Grand Prairie. Aur jo sham ka program hai ji, matlab wo wala galat mat samjha karo, sham ke program mein chai pakode snacks hote hain, wo apne chai pakode snacks khud banate hain, they make it fresh on site and you can enjoy those as well. Address hai jiska 5103 Magna Carta Boulevard, that's 5103 Magna Carta Boulevard, just google Himalayan Bazaar in Grand प्रेरी। इतनी सी चीज है, ज्यादा टेंशन है मत लिया करो, लाइफ में आसानियां पैदा करो, मेरे एक दोस्त है वो कहते हैं और मुझे आज वो याद आ रहे हैं। खैर, एशियन ग्रोसरी स्टोर विद ऑल द एमेनिटीज दैट यू नीड एंड फ्री डिलीवरी ऑन $50 और मोर इफ यू आर इन अ 5-mile रेडियस, हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी इज द प्लेस फॉर यू। टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सॉन्ग रियली क्विकली, उसके साथ साथ आपको पूछूंगा सवाल, बट इस गाने के बाद, सो रेडी हो जाइए क्योंकि इस गाने के बाद आपको, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, पर ये जो मैं गाने लगाने लगा ना, एक्चुअली एक ऐसी सेलिब्रेशन है म्यूज़िक की कि जब आप ये गाने सुनेंगे, कॉन्टेस्ट को हम करेंगे थोड़ी देर बाद, फिलहाल हम करेंगे इनकी बात, बिकॉज आई डोंट थिंक के इनके बिना बॉलीवुड वो होता जो बॉलीवुड था और बना।

0: द वॉइस इज ऑफ मुकेश चंद माथुर, जिनको हम प्यार से मुकेश के नाम से जानते हैं। जी आज के दिन हुआ था इस प्लेबैक सिंगर का बर्थडे। 22nd of July 1923 ही वॉज बॉर्न। ही पास्ड अवे ऑन द 27th of August 1976 एट द एज ऑफ 53। लिटल टू अर्ली टू गो, बट इन द टाइम दैट ही वॉज हेयर ही गेव अस सम फैंटास्टिक नंबर्स, सम फैंटास्टिक सॉन्ग्स दैट वी कैन चेरिश forever and forever more. क्या कई बार यूं ही दिखा है। एंड दिस वॉज फ्रॉम द मूवी रजनीगंधा 1973, जिसके लिए इनको मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल। दैट वॉज इन द ईयर 1973। बहुत सारी एक्टर्स को आवाज़ दी, जैसे कि राज कपूर साहब, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त, दिलीप कुमार साहब। बट अगर इनके करियर की बात की जाए तो जो पहली मूवी मैं बोलूँगा आई थी जी, वो थी अंदाज। उसमें नौशाद साहब ने गाने का मौका दिया। उसके बाद अनोखी अदा 1948, मेला 1948, अंदाज अगेन 1949, एंड देन मेनी अदर मूवीज़। कभी कभी बाय खयाम जो गाना है जी, उसका टाइटल ट्रैक वो भी इन्होंने ही गाया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी फ्रॉम द मूवी अनाड़ी, सबसे बड़ा नादान वही है, कई बार यूं ही देखा है, बहुत सारे प्यारे गाने इनके नाम हैं जी। एंड आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस लेजेंडरी आर्टिस्ट को विद सम ट्रैक्स राइट हियर ऑन फन एशिया। तो हमारी तरफ से ये आवाज़ कहते हैं ना, ऊपर तक जाती है जी, जो आवाज़ आप दिल से निकालते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारी ये बर्थडे विश जो है मुकेश साहब को, जहाँ भी वो हो, रेस्ट इन पीस, वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। स्वर्ग में है तो वहाँ, या स्वर्ग के अलावा अगर कोई और अच्छी जगह है जहाँ पे ऐसे सिंगर्स को जगह मिलती है, उन तक हमारा आज ही हैप्पी बर्थडे विश पहुँचे, यही दुआ है मेरी। एक गाना और मैं चलाना चाहता हूँ इनका, इन सेलिब्रेशन ऑफ सच अ लवली वर्स यू नो लेजेंडरी सिंगर ऑफ हिज टाइम। ये गाना एक और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोना लव दिस वन एज वेल।
1: कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: देखो कई लोगों को पेट पसंद होते हैं, कई लोगों को पेट नहीं पसंद होते हैं। देखो मेरे पास तो दो दो डॉगीज है जी घर पे, मेरे को पेट्स बड़े पसंद है। और ऐसे ही ना मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ को पेट बड़े पसंद थे। अब वो पेट ले आई, ठीक है जी, पेट क्या लाई, कुत्ता। अब वो कुत्ता लाई और मैं देखे जा रहा हूँ, घर पे बुलाया हुआ था मुझे, तो मैं देख रहा हूँ कि वो ना उनको ट्रेनिंग कराने की कोशिश कर रही है लेडी ना, तो बार बार कुत्ते को कुछ सिखा रही है, सिट, गेट अप, फॉलो। वो कुत्ता नहीं समझ रहा, तो बेवकूफ़ मेरा दोस्त कहता है रहने दे तेरे से नहीं होगा, अपनी बीवी को कहता है रहने दे तेरे से नहीं होगा। भाभी ने जवाब दिया कैसे नहीं होगा, शुरू में तुम भी बड़े नखरे दिखाते थे बेटा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज पेशेंस विंस, यू नो, जब आप बार बार सिखाते हो डॉगी को सीख जाता है वो।
1: पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: 6:26 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, मैं रहूंगा जी आपके साथ टिल 7 o'clock। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। आपके पास कुत्ते हैं नहीं है, जैसे मर्जी है आपकी वैसे लाइफ जियो यार, कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ कभी कभी आप क्या करते हैं, जब आप छोटे थे ना तो आप अगर माँ से नाराज हो गई किसी बात के लिए या कुछ मनवाना होता था माँ से, तो आप भूख हड़ताल कर देते थे। यू वुड से मैंने नहीं खाना मम्मी, जब तक आप मेरी बात नहीं, मेरी ट्रिप नहीं ओके करोगी, मुझे पैसे नहीं दोगे, मैंने नहीं खाना खाना। तो माँ है ना मान जाती थी थोड़ी देर बाद। यही चीज़ बीवी के सामने मैंने ट्राई की, बाकी आप समझदार हो।

चलो जी, बंदा ये बंदा से बातें करता खास है और रहूंगा जी आपके साथ एंटरटेनमेंट का खजाना लेके, जो कि है जी फन एशिया रेडियो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय IANT, जिनका इवेंट है जी आपके लिए 15th of August, 15 अगस्त की सेलिब्रेशन है जी। एंड दिस इवेंट दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 80 ईयर्स। जी हाँ, 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ब्रॉट यू बाय इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस। इसके लिए आप डेट मार्क कर लीजिए अपनी, विच इज ऑन द 15th of August, एंड दिस टाइम इट इज राइट हियर इन फ्रिस्को। सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है जनाब कि दिस वन इज गोइंग टू बी इंडोर्स। लुकिंग एट द समर हीट, वी आर ब्रिंगिंग दिस इवेंट इंडोर्स एंड इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीबॉडी। इन ऑथेंटिक फूड स्टॉल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डैलस रेस्टोरेंट्स कम एंड पार्टिसिपेट। एक बहुत बड़ा परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग एंड एन इनक्रेडिबल ड्रोन शो एंड फायरवर्क्स फिनाले। पूरी फैमिली को लाइए, अपने फ्रेंड्स को साथ लाइए एंड बी ए पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सस बिगेस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन IANT, आनंद बाजार 2026। एंड दिस इज एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। 2 बजे ऑनवर्ड्स ये इवेंट है जी आपके लिए, कंप्लीटली फ्री फॉर द फैमिली। लेट एवरीबॉडी नो एंड मार्क योर कैलेंडर्स, सैटरडे ऑगस्ट 15th, दिस वन इज कमिंग अप। ऑलराइट, विद दैट आई एम गोना टेक यू टू अ ट्रैक। और उसके साथ साथ एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, और सवाल ये पूछना है कि अगर आपने, लेट्स से अगर आपने अपनी बीवी को बोला कि कुछ अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ, या तुम एक काम करो, बीवी से आपने ये पूछा हो कभी कि तुम जो सबसे अच्छा बनाती हो वो बना दो, तो आपकी पत्नी ने क्या बनाया? व्हेन यू आस्क्ड योर वाइफ कि जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो तुम वो बना दो, उसने क्या बनाया, ये आपने मुझे बताना है। क्रिएटिव आंसर्स आर वेलकम। जो देगा मोस्ट क्रिएटिव आंसर उसको मिलेगा जी फोर्ट वर्थ इंडिया बाजार की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर एब्सोल्युटली फ्री। नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये आपको फोर्ट वर्थ वाले इंडिया बाजार से मिलेगा, जो कि अब खुल चुका है जी। एंड दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर पीपल दैट लिव इन केलर, हर्स्ट, हैसलेट या फोर्ट वर्थ। 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ इज द एड्रेस, दैट्स 5152। ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि इंडिया बाजार में सारी ग्रोसरीज मिलती हैं, चाहे स्नैक्स हो, स्पाइसेस हो, प्रोड्यूस हो, दिस इज द रियल डील। नाउ बताइए कि आपने बीवी को बोला हो, बेगम माय डार्लिंग वो बनाओ जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो, तो उन्होंने क्या बनाया?

0: अच्छा चलो, गाना बहुत बढ़िया है, उससे पहले हमारे पास कॉलर की लाइन लगे है भैया। ये सेगमेंट होने वाला है बहुत मजेदार, बहुत ही मजा आएगा। कौन बोल रहा है?
1: रोजीना।
0: रोजीना जी कैसन, सब ठीक बा?
1: जी जी बिल्कुल ठीक, आप बताए कैसे जा रहा है?
0: मेरा जी ए बी सी डी ई एफ जी एच एच एच एच सब ठीक जा रहा है। आप जी जी जी ठीक है कल लो बात। अच्छा रोजीना जी, आप तो बीवी हो तो, अच्छा मैं पूछता हूँ, उल्टा उल्टा पूछता हूँ आपसे। अगर आपके पति ने आपको बोला कि रोजीना जो तुम बहुत बढ़िया बनाती हो वो बनाओ, क्या बनाया आपने?
1: मैंने उसको उल्लू बना दिया।
0: उसको उल्लू बना दिया? उल्लू हु, किया उसने?
1: बस कर ही लिया, क्या ही कर सकते हैं, हस्बैंड है ना आखिर।
0: अगली बारी जब उसको उल्लू बनाओगी ना तो कहना उसको के कौन करेगा बे। चलो रोजीना जी, आपका आंसर नोट कर लिया गया है। अच्छा एक बात और बता दूं कि आंसर आपने रिपीट नहीं करना। एक आंसर रोजीना जी दे चुकी हैं कि भैया जब उनके हस्बैंड ने बोला कुछ बढ़िया बनाओ, द बेस्ट यू मेक, उन्होंने उल्लू बना दिया।
2: अब यहाँ एक बात और बता,
0: अरे देखे रेडियो, ये बहुत बढ़िया, क्या बात है यार आपकी, मतलब आपको ना मैं सल्यूट देना चाहता हूँ। और आप अगर मेरे पास होते तो खैर वो मैं बाद में बताऊंगा, आपको इसलिए सल्यूट देना चाहता हूँ क्योंकि आपने रेडियो का वॉल्यूम फटाफट बंद कर दिया। देखो लोगो, इनसे सीखो, ये है वो रेडियो को वॉल्यूम कम करने वाले एग्जाम्पल। क्या नाम है सर आपका?
2: मोहम्मद अख्तरुज़्ज़मान।
0: मोहम्मद, ओ द यस्टरडे लंबा वाला,
2: अख्तरुज़्ज़मान।
0: यस मोहम्मद भाई, हाउ आर यू माय ब्रदर?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू ब्रदर?
0: वेरी गुड वेरी गुड। सो व्हेन यू टोल्ड योर वाइफ के जो तुम अच्छा बनाती हो वो बनाओ, उन्होंने क्या बनाया?
2: वो मुंह बना लेती है।
0: ओ माय गॉड मोहम्मद भाई, अभी आपका आंसर मेरे नोटेड हो गया है। मोहम्मद भाई का आंसर, रोजीना का आंसर था उल्लू। आगे जाके देखता हूँ कौन खड़ा है पुली पे, देखते हैं इनसे करके बात। गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, कौन बोल रहे हैं आप?
3: शर्मिष्ठा।
0: डर लगना होता है जिससे, वो डरमिष्ठा
3: नहीं, जो धर्म में मानती है वो धर्मिष्ठा।
0: धर्मिष्ठा, अच्छा अच्छा अच्छा, मैकट ये बड़ा अच्छा है आप, डरमिष्ठा। बेटा मेरा नाम क्या है? डर, पहले डर फिर मिष्ठा करेंगे। अच्छा धर्मिष्ठा जी, आपने बनाया कुछ, क्या बनाया आपने जब उन्होंने कहा व्हाट यू मेक बेस्ट मेक फॉर मी?
3: आई थिंक मैं तो बोलूंगी अभी मैंने एक गधे को इंसान बनाया, और क्या बनाऊं।
0: ओ तेरा भला हो गया धर्मिष्ठा जी, इतनी वाओ मैन, दिस इज लाइक, क्या बात है। अच्छा अब वो जो गधा है वो चार टांगों पे चलता है कि दो पे ही आ गया? दो पे आ गया वो?
3: नहीं नहीं, चार टांगों पे ही चलता अभी तक। मैंने टांगे को कुछ नहीं किया
0: नहीं, अच्छा टांगों को कुछ नहीं किया, बस उसको गधे से इंसान बना दिया, क्या बात धर्मिष्ठा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। तो भैया जी ये बात हुई कि बीवी को पूछा इंसान ने भैया क्या। ये एक और है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं हम। गुड इवनिंग टू यू फनीशिया, रेडियो का वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज्यादा। नाउ टेल मी हु इज दिस? देखो यार ये जो है ना बात, ये बात मजा नहीं आता यार। एक तो मैं इतना बिजी अमिताभ बच्चन को छोड़ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप मेरे को कॉल करके हेलो नहीं कहते। गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, उल्ला ये देखो जी कमाल हो गया। गुड इवनिंग फनीशिया।
4: मार्विन कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छा हूँ जी, मार के विन करते जा रहा हूँ, कभी मच्छर मार लेता हूँ कभी कॉकरोच घर पे जो आ जाए ठीक है चल जाता है काम। आप बताओ आपका नाम?
4: बस शादी के बाद ना अब आप ऐसे ही रह गए, बताइए।
0: ऐसे ही कैसे ही मतलब?
4: अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगता है मार्विन कि आपने ये सवाल औरतों से नहीं सिर्फ मर्दों से किया है? अब ठीक है औरतें कूद गई बीच में,
0: और सारी आ गई, बताओ है सारा धंधा पानी लेके।
4: हाँ जी बिल्कुल, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मर्द ने अगर जवाब दे दिया तो आज उसकी मुंह दिखाई हो पाएगी घर में?
0: देखिए जी मैं सिर्फ ना मैं जैसे पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं ना, वो अपना काम करके घर चले जाते हैं, बाकी घर में क्या हो मुझे क्या लेना, मैंने तो अपनी बात करनी है, चले जाना मैडम। अच्छा जी अब आप ये बताइए कि आप क्या बनाती
4: हैं? मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ, मगर अगर वो मुझसे ये पूछ लें कि जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो वो बना दो, तो मैं तो फिर उनसे यही कहूंगी कि भाई चलो बाहर ही चलते हैं कहीं।
0: तो आप
4: चंडीगढ़ चलते हैं, चलो चंडीगढ़ चलते हैं,
0: चंडीगढ़ चलते हैं। आप बेवकूफ बनाती हैं सबसे बढ़िया, समझ गया हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, धन्यवाद पीपल। ये बड़ा बढ़िया था कि भैया उल्लू बनाती हूँ और फिर आए मोहम्मद भाई जो कहते हैं मेरी बीवी तो मुंह बना लेती है। गुड इवनिंग फनेजिया, लास्ट कॉल फॉर दिस सेगमेंट। कौन बोल रहे? हेलो। दूर दूर तक, गांव गांव तक मेरी आवाज गूंज रही है। गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहे हैं? लास्ट कॉल।
5: हेलो,
0: हाय।
6: हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हैं?
0: नहीं नहीं, ये क्या हुआ? हेलो बीवी ने किया, आगे ये फोन आपने छीन लिया।
6: नहीं, नहीं।
0: ये क्या बात?
6: हेलो बेटी ने किया।
0: अच्छा बेटी ने, फिर आपको हम जाने देते हैं। नाम बताइए।
6: ऋषि नाम है जी।
0: ऋषि, क्या ज्ञान पाया आपने ऋषि मुनि बन के? ये बताओ कि बीवी को जब बोला कुछ अच्छा बना, बढ़िया बना दे, तो क्या बनाया?
6: बचपन में आप और हम सब बने होंगे, मुर्गा बनाया जी।
0: वो बीवी ने बनाया?
6: हाँ।
0: आपको
6: मुर्गा बहुत बढ़िया बनाते हैं बीवी।
0: अच्छा, नहीं नहीं, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। आपको मुर्गा बनाया कि मुर्गा बनाया?
6: बस समझ जाओ, आपके मुर्गा बनाया।
0: ये बात यहीं पे छोड़ दो, कहते हैं इधर ही छोड़ दो। बहुत बढ़िया लगा हमें आपका आंसर बड़े भैया, और आप जीते हैं मेरी तरफ से ये गिफ्ट। हैम्पर फोर्ट वर्थ जा सकते हैं?
6: यस जा सकते।
0: होल्ड ऑन द लाइन फॉर मी देन भैया, लेट्स टेक पीपल बैक टू द म्यूजिक।

0: That was the lovely track that you all heard from the movie, जिसका नाम था जी पति पत्नी और वो दो. जैसे कि मेरे घर पे, अच्छा अच्छा है, मेरे बारे में बात करें, पति पत्नी और वो दो, एक का नाम है एरियल, एक का नाम है स्टेला. ये दोनों छोटे मेरे बेबीज हैं, फोर लेगेड बेबीज, यू नो, डॉग्स, बट आई लव देम. एनीवे, हम जाने लगे हैं जी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ. उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा ऋषि मोहन भैया को जो जीते जी ये इनाम. एक्चुअली ना ये जो कॉन्टेस्ट था, इसमें जब मैंने इनाम अनाउंस कर दिया ऋषि भाई का, तो एक कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने जो जवाब दिया ना भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया. कहते जब मैं कहता हूँ बीवी को कि जो तू सबसे अच्छा बनाती है वो बना, तो कहती है कहते हैं उन्होंने मेरे लिए पैग बनाया, थोड़ा सा चखना लाई और सलाद बनाया. वाह वाह वाह, एक ब्रेक के बाद वापस आया.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो.
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है, ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Ocho.
11: Hoko.
10: Ocho.
11: Hoko.
10: Ocho.
11: It's Hoko.
12: अरे बस भी करो यार.
11: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
12: नाम Hoko हो या Ocho, क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.